0: लायका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

सुनिए हाथ वै सगा नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछ।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जा।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

आहत जुग जुग एको वेश पुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय सिद्ध अवर।

नाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस, लख लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच

0: इज लाइक अ गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No.

0: Greater London. This is Cajal on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning, Cameron McGarvey here. Now, good news at South Norwood. Doyle Road has just reopened after the earlier recovery of the accident from Portland Road to Clifford Road. So good news there. North Circular at the Bowes Park, we've got a travel time already of 15 minutes in and around the Clockhouse Interchange. And then the public transport wise, a couple of issues going on. Great Northern Trains, emergency services still dealing with an incident. Cancellations between Moorgate and Alexandra Palace, and no service via Hartford North between Stevenage and Alexandra Palace as well. And then Jubilee Line, we've got the late finishing of engineering work, severe delays reported. That's your traffic and travel.
2: Yeah, like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Khatroke Khiladi on Colours TV. Khatroke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV.
4: Khatroke Khiladi.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
9: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
8: डेजर्ट सफारी,
9: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
8: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
9: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
10: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
11: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
12: Lights on, shutters up, staff ready.
11: But today's customers don't start on the high street.
12: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
11: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
12: They walk into your competitors.
11: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network.
14: Himalaya Carpets की धड़कती हुई सेल,
15: गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल,
16: रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू,
17: तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ,
18: लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर,
19: LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर,
20: रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ।
21: कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं,
22: विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल
23: अपोजिट द Ealing Hospital.
24: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
25: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
26: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 07795181001।
0: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
1: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
4: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio partner, Leica Radio Network.
5: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Southall Travel.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
9: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
11: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
13: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
14: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111 or visit sonatours.co.uk.

0: लाइका गोल्ड
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday, the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB31AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping, and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5 कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Our line. Be part of a historic grand opening.
9: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
7: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
9: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
7: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.com.
5: 073-00-99-8823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA. And regulated by the FCA and PRA.
8: हिमालय कारपेट्स की धधकती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट हिमालय कारपेट्स डॉट कॉम और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू इसे अकेले फेस मत करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 आज ही एक्शन ले 0208-907-2444
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
12: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
13: Bikaner wala, parampara bhi.
14: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG26HA कॉल 07555506015
15: हेलो लंदन द वेट इज ओवर कल्याण ज्वेलर्स इनवाइट्स यू टू द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ स्पेक्टेकुलर न्यू शोरूम जॉइन अस ऑन ग्रीन स्ट्रीट अपटन पार्क दिस जुलाई 31st कल्याण ज्वेलर्स ऑल्सो एट बेलग्रेव रोड लेस्टर
16: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Gold Breakfast with Kajal.
1: Time for Listener of the Week.
17: Hi, my name is Pritesh and I am the Listener of the Week on The Breakfast Show. I love listening into the Leica Radio Network because they play the best in old school Bollywood. Listen to my playlist from Monday to Friday only on The Breakfast Show with Kajal on Leica Gold and Leica Radio.

0: जुम्मा जुम्मा दे दे कोई हिंट तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन हमारे जो लिस्टनर ऑफ द वीक है प्रितेश महारिस फिल, ये उनका ही चॉइस है. This is his choice of songs for this week here on Laika Radio Network. You can also become listener of the week by sending me a WhatsApp message saying, "Hey Kaj, I'd love to be listener of the week." If you've never, ever, ever been one, this could be your opportunity to get your songs out there, your voice aired on air.
1: Ye hai. Laika Gold. Laika Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And Gold is trading at £97.49 sterling per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: You know, it doesn't have to be Friday for me to play this song. You do realize that, right? Well, anyway, got another hit classic coming up. Stay locked in.
1: Laika Gold, traffic and travel.
2: Good morning. This is Cameron McGarvey here. M25 anti-clockwise from Junction 13 for the A30 at Staines towards Junction 12 for the M3. Traffic looking heavier than normal this morning. Travel time currently of around 15 minutes. Dartford, the A296 Princess Road. We've got that partially blocked at the moment at the M25 for Junction 1B Dartford with an accident on the roundabout itself and very slow on the approach. M4 Heathrow Spur Road southbound delays just before the tunnels heading in towards the terminals. And public transport, Bakerloo Line, track fault at Kenton, no service between Stonebridge Park and Harrow and Wealdstone, and Elizabeth Line, problems with the signals, severe delays reported.
3: Because life calls for more than one pair. There's the pair you wore when you said yes. The pair that always makes you feel your best. And the pair you'll wear for what comes next. That's why when you buy a pair of prescription glasses or sunglasses, we'll give you a second pair half price and your third pair for free. Because life isn't lived in just one pair. Boots Opticians. See what's possible. Offer ends 22nd of September 2026. Cheapest pair free from our Boots brand optical range with single vision lenses. T's and C's apply.
1: Laika Gold. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Khatron Ke
4: Khiladi. Mum, I'm outside.
5: Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
9: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
8: So where do we find something like that now?
9: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
10: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
11: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
12: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
11: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
12: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
11: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
14: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, देशा राइस का है जमाना.
15: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
16: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271 लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं
17: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203773633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।

0: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
3: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
4: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
7: शाम चलने लगे दिल मच.
6: With the legendary Anup Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
10: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है.
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लई जाए उठे आप पवित्र यात्रा पर.
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
10: दर्शन पण अने यूरोप पण.
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
10: कॉल 02089002323. द स्टार टूर,
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
12: हेलो लंदन, द वेट इज ओवर. कल्याण ज्वेलर्स इनवाइट्स यू टू द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ स्पेक्टेकुलर न्यू शोरूम. जॉइन अस ऑन ग्रीन स्ट्रीट, अपटन पार्क दिस जुलाई 31st. कल्याण ज्वेलर्स आल्सो एट बेलग्रेव रोड, Leicester.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better on the Leica Radio Network.
15: Gold Breakfast with Kajal.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन सॉन्ग से लेकर मैं रवि शर्मा हाजिर हूं। बहनों भाइयों की जिस प्रकार मेरा प्यार और मोहब्बत भरा नमस्कार। बृहस्पतिवार जुलाई महीने की 30 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। अब से लेकर दोपहर बाद 1 तक सुनिए मीठे मीठे गीत, लेकिन भाई आज मिठास में थोड़ा दर्द भी शामिल रहेगा कुछ एक गीतों में, क्योंकि हमारे श्रोताओं को रहता है इंतजार जिंदगी के सारे अच्छे बुरे मीठे कड़वे अनुभव भाई पिरो करके गीतों में पेश किए जाएं। तो ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सावन शुरू हो गया है। हाँ भाई, सावन का महीना पवन करे शोर, लेकिन वो सावन जिसमें वो बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बूंदाबांदी और तेज बौछारें, वो वाला सावन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो धूप है, चमक है, गर्माहट है, वो वाला सावन इंतजार तो उसका ही है। और एक सावन वो भी भाई, ऐसो पापी सावन आयो, सावन आग लगाए रे, जिस सावन में मिले पिया जी वो सावन कब आए रे।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Leica Gold. London का number one Asian retro music station.
1: तो साहब कल पूर्णमासी थी और मास पूर्ण हुए तो नए मास का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन भाई हमारी व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि महाराष्ट्र में गुजरात में जो है वो श्रावण शुक्ल पक्ष से शुरू होता है यानी 15 बाद, और उत्तर भारत में यानी पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा तो इन राज्यों में श्रावण मास आज से शुरू हो रहा है। अब भाई आप जैसे मर्जी कर लें, 15 बाद शुरू करें या आज से शुरू करें, क्योंकि पूर्णमासी कल थी तो कृष्ण पक्ष का पहला दिन यानी श्रावण का पहला दिन है, और श्रावण से जुड़ी हैं बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे पूजा पाठ। तो साहब हम तो शुरू करते हैं आज से सावन का महीना।

0: हेमलता की आवाज सुन रहे थे आप इस गीत में, और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया, जो प्रोग्राम का पहला गीत था, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म नहले पे दहला। किशोर कुमार और लता जी ने स्वर दिया था उस गीत को। सावन का महीना आ गया, घोषणा हो गई, लेकिन देखते हैं भाई सचमुच मौसम में सावन कब आता है। सपनों के गांव में सावन आया है, अभी तो रियलिटी में कब आता है इंतजार है। इस सप्ताह तो कहते हैं भाई गर्मी पड़ने वाली है, पड़ रही है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, लेकिन जब बादल आएंगे और भाई छाएंगे और बारिश करेंगे तो ठंडी बौछारें लाएंगे। दो गीत बैक टू बैक सुनवाते हुए हम पहुंच जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जानने के लिए कि आज क्या रेट चल रहा है पाउंड का।
1: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India. आज का रेट बता रहे हैं और कहते हैं भाई पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? अच्छा रेट है, देखिए एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 127.35 इंडियन रुपीज, 127 रुपए और 35 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है
3: Laika Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: Tupco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 8574-8410.
3: साफो ट्रेवल at all protected.
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
7: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
8: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call karein 02089072444. That's 02089072444.
9: Be part of a historic grand opening.
10: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
9: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
10: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
9: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
12: Honslo, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
13: Bikaner wala parampara bhi swad bhi.
14: Bikaner wala mein enjoy kijiye famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch. Aaj hi aaiye 101-105 High Street, Honslo, TW3 1QT. Call kare 07487-687-885.
15: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
17: लीजिए साहब, बात तो सावन की हमने प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन सावन का एहसास नहीं हुआ. सावन हमारे पास नहीं हुआ. भाई सावन में मोर नाचता है, कोयल कूकती है, पपीहा आवाज लगाता है आकाश की ओर देखकर, इंतजार करता है उस बूंद का जो स्वाति नक्षत्र में गिरती है। लेकिन साहब सावन में वियोग भी होता है, मन का रोग भी होता है, दर्द भी होता है, यादें भी होती हैं।

0: आपको मेरे लिए फुर्सत कभी मिल पाएगी? जिंदगी क्या आजकल करते हुए कट जाएगी? आपकी ख्वाहिश से पहले काश हम ये जानते कि आरजू ये आपकी इतना हमें तड़पाएगी। तेरे बिन सावन कैसे बीता तू क्या जाने बालमा। जब याद किसी की आती है, 1967 में आई थी फिल्म, धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे शायद इसमें। भाई गीत बहुत हिट थे इस फिल्म के, उनमें से एक हमने आपको सुनवाया वियोगी गीत, और सुनवाया किसने पहुंचाया आप तक।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। भारत की पार्लियामेंट में पेपर लीक रोकने से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। आपको बता दें भाई, बिल को दोनों सदनों में पास होना होता है, लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में परीक्षाओं से पेपर लीक को रोकने से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। बिल पेश करते हुए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एंटी पेपर लीक बिल देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया करने पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बेल्जियम में होने वाले FIH वर्ल्ड कप में अपनी पारंपरिक नीली जर्सी के बजाय केसरिया रंग की जर्सी में खेलती नजर आएंगी भारतीय महिलाएं। पूर्व कप्तान वीरेंद्र रसकिन्हा ने इस बदलाव पर सवाल उठाए हैं, जबकि हॉकी इंडिया ने इसे टेक्निकल जरूरत बताते हुए बचाव किया है। भाई हर रंग में हर बात में वो धर्म की दखल अंदाजी ढूंढने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन करते हैं। भारत में बांकीपुर उपचुनाव में यानी बाई इलेक्शन में वोटिंग चल रही है। आज पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी है। सुबह 10 बजे वहां सिर्फ 5% ही वोटिंग हुई थी। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई है। अब वहां पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है। करीब 3 दिन तक चले गतिरोध के बाद, रुकावटों के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऐदल सिंह कंसाना ने मूंग की 60% तक खरीद की घोषणा की है, और इसके साथ ही सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि उसने मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान की ओर से किए गए अचानक हमले के जवाब में ईरान पर अटैक शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ये हमले मंगलवार को जॉर्डन में अमेरिकी फौजी ठिकानों और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर ईरान की ओर से की गई गोलीबारी का करारा जवाब है। कोविड के दौरान अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर रहे फाउची ने संसद में सवालों के जवाब पर चुप्पी साध ली है। कोविड महामारी के दौरान अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची थे। उन्होंने अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई में सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि रिपब्लिकन उनके बयान का इस्तेमाल उनके खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर चरमपंथी हमला हुआ है। DSP समेत 9 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हांगू के खजीना चेक पोस्ट पर हुए अटैक और जवाबी हमले में एक DSP समेत 9 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई है। पता चला है कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने भी 15 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बयान के मुताबिक बुधवार को हुए हमले और उसके जवाब में चलाए गए अभियान में DSP दियार खान समेत 9 पुलिस वाले मारे गए हैं और DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। फ्रांस और स्पेन के बाद ग्रीस के जंगलों में भी अब आग लगी है, धधकी है आग। दो दमकल कर्मियों यानी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मौत हो गई है। ग्रीस के क्रीट आइलैंड के रेथिम्नो इलाके में लगी जंगल की आग से जूझते हुए दो कर्मचारियों की मौत हुई है। ये दोनों आग में फंस गए थे। तेज रफ्तार हवाओं ने आग की लपटों को और भड़का दिया है, जिसके बाद कई गांवों को खाली कराया गया है। साउथ यूरोप में गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगने की ये एक और बड़ी घटना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल बुधवार सुबह ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक और गाली गलौज से भरी भाषा में धमकी दी। इससे पहले ईरान ने रात में अचानक जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल हमला किया था।

लौट आइए संगीत की ओर। कुछ गीतों का मुखड़ा पूरे गीत को परिभाषित कर देता है। सुनते ही पता लग जाता है भाई इसमें आरडी बर्मन का स्वर है, आरडी बर्मन की धुन है, आरडी बर्मन का प्रभाव है इस गीत में। हालांकि आवाज रफी साहब की भी शामिल है इसमें। शोले, दैट्स द फिल्म, द गीत टेकन फ्रॉम।

मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन वो मैसेज अभी तक नहीं आया जिसका इंतजार है। मुझे यकीन है आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।

हम भी यहीं और आप भी यहीं, नहीं जाना कहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हैरी थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा मैसेज नहीं भेजते, आज भेजा आपने, वो भी मैंने मांग के मंगवाया है। मैंने कहा कि उस मैसेज का इंतजार है जो अभी तक नहीं आया है, हैरी का आ गया। हैरी कह रहे हैं कि ये गाना जो है शोले का नहीं शान का है, यही तो सुनना चाहता था भाई, मैं इंतजार कर रहा था कि कितना ध्यान से सुन रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच हैरी, कभी कभी मैसेज भेज दिया करें।

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम की दूसरे भाग में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर चिंतन का समय हो गया है। लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में भाई चिंतन हम 11 बजे की खबरों के बाद शामिल करते हैं। ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, वक्त हो गया है, वक्त हो गया है थॉट फॉर द डे का, आज का विचार। आज का चिंतन और आज के चिंतन में हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का भेजा आलेख। डॉक्टर बख्शी लिखते हैं, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी पड़ रही है ना, हमें उस माहौल की याद दिला रही है जब भारत में लोग छबील लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। भाई गर्मी से पसीना बहाते किसान मजदूर या और मेहनत करने वाले लोग सड़क से गुजरते हुए जब रास्ते में कोई प्याऊ देखते हैं तो प्यास और भड़क उठती है, पानी पीने के लिए रुकते हैं। और कई लोग ऐसी छबील लगाते हैं भाई जो घड़े और रखे होते हैं और उनमें इतना ठंडा पानी होता है कि पी करके जैसे अमृत जैसी फीलिंग्स आती हैं, अमृत पान किया हो, जीवन मिल गया हो। ऐसे ही एक शहर में एक सेठ ने छबील लगाई थी और उस पर एक नौकर बिठा रखा था, एक लड़का जो आते जाते लोगों को पानी पिलाता था। रात को घड़े भर के रखे जाते, सुबह तक वो पानी इतना ठंडा हो चुका होता और जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती दोपहर में तो वहां से गुजरते हुए लोग, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, मजदूर, दूसरे लोग, लाइन लग जाती थी पानी पीने वालों की। सुबह से शाम तक वो लड़का मजदूरी करता वहां बैठता था, लेकिन दोपहर में करीब 1 बजे वो लड़का अपने घर खाना खाने जाता। उतनी देर सेठ खुद प्याऊ पर, छबील पर बैठता। वो बैठ तो जाता लेकिन पानी नहीं पिलाता था, बैठता इसलिए था कि भाई रखवाली हो जाए, कोई घड़े ना उठा ले जाए। सेठ बैठा था, लड़का रोटी खाने गया था, तभी पसीना बहाता एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा खड़ी करके आके कहने लगा, सेठ जी पानी पिला दो, बहुत गर्मी है, बहुत जोर से प्यास लगी है। सेठ ने कहा, वेट कर, ऐसे बह जा, बंदा गया रोटी खान, बंदा वापस आएगा तो पानी पिलाएगा। अब रिक्शा वाला भी इंतजार करने लगा। कड़ाके की धूप में जैसे आग बरस रही थी, वैसे भी वो रिक्शा चला के आया था, पसीने में नहा रहा था, गला सूख चुका था। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, सेठ जी प्लीज पानी पिला दीजिए, बहुत बुरी हालत है। सेठ चिल्लाया, तेनू सुनया नहीं मैं, क्या बंदा रोटी खान गया है, बंदा वापस आएगा तो पानी पिलाएगा। रिक्शा वाला फिर इंतजार करने लगा, एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। एक बार फिर उसने थोड़े से अंतराल के बाद कहा, सेठ जी बड़ी मेहरबानी होगी, पानी पिला दीजिए, जान निकली जा रही है प्यास के मारे। अब तो सेठ और भी गुस्से में आ गया, वो एक बार कहता तेनु बंदा वापस आएगा तो पानी पिलाएगा, बंदा रोटी खान गया। रिक्शा वाले ने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही बंदा बन जाओ ना। आप ही बंदा बन के पानी पिला दो।
1: चिंतन चिंतन,
0: बंदा वही है जो बंदगी करे, सेवा भाव हो। भाई कुछ लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन मन में अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो भाव नहीं है तो पुण्य लगेगा क्या। बंदगी जो करे वही बंदा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे भीतर बंदगी का भाव भर दो, हमें बंदा बना के रखो। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र बख्शी।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे, आलेख डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का भेजा हुआ था और जो गीत हमने साथ जोड़ा फिल्म हलचल से लिया गया था। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में ये गीत बहुत पसंद आया हमारे श्रोताओं को, आज का विचार भी बहुत भाया। निशा कहती है तो बताया नहीं आपने कि सेठ बंदा बना के नहीं बना। भाई कोई बात जाकर दिल पर लगती है तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, सेठ बंदा बन गया। उसके बाद तो वो एक घंटे से भी ज्यादा समय बैठने लगा और लड़के को कहता कि आप आराम से रोटी खा के आओ, जब तक आप वापस आओगे मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को अपने हाथ से पानी पिलाना। भाई प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने का क्या फायदा। आप सोचते होंगे वो गीत भी चल सकता था आज के चिंतन के साथ, लेकिन ये गीत बहुत दिनों से नहीं सुना था, पर इस गीत को प्रोग्राम में शामिल करने का एक कारण ये भी था ना भाइयों कि इसमें सोनू निगम की आवाज शामिल थी और सोनू हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दुलारे सोनू आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भाई आज सोनू का 53वां जन्मदिन है, बधाई हो। कहते हैं एक वो जमाना था जब बड़े बड़े गायक कलाकार इस दुनिया से विदा हो गए और लग रहा था कि इस खाली जगह को कौन भरेगा। संगीत प्रेमी बड़े निराश हो गए थे। वैसे उदित नारायण और भाई कुमार सानू और बहुत सारे गायक कलाकार आ गए थे, लेकिन सोनू निगम ने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई। सच में बहुत सुरीले गायक हैं सोनू, सुरेश वाडकर भी, लेकिन सोनू तो ऐसे आए के फिर छाए। और कहते हैं कि भाई सोनू निगम रफ़ी साहब के दीवाने थे, उनके गाने गाते थे। शुरू शुरू में तो इस नौजवान को ऐसे ऐसे दर्द भरे गाने गाने पड़े। भाई कहते हैं कि यंग लड़का रोने पीटने वाले गाने गा रहा था। लेकिन बाद में जैसे गीत डिजर्व करते थे सोनू इन्हें मिले, बाजार में इनका सम्मान भी बढ़ा और इनके दाम भी बढ़े। सोनू भाई के साथ स्टेज साझा करने का मौका मिला था मुझे भारत में और वो भी बड़ा सरप्राइज था। आपको बता दूं कि सोनू हरियाणा से हैं, फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था और इसलिए भाई हरियाणा सरकार ने सभी दुनिया भर में कहीं भी कोई ऐसे हरियाणवी स्थापित हुआ है तो जिसने नाम कमाया उन्हें बुला करके सम्मानित किया। महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री रहे थे, वो भी आए हुए थे और सबको एक ही होटल में ठहराया गया था, लेकिन सोनू निगम के बारे में मुझे सूचना नहीं थी कि वो भी आए हुए हैं। गुड़गांव में कार्यक्रम हो रहा था और मैं ही स्टेज संभाले हुए था तो साहब मुझे कान में मैसेज आया, वो जो ईयरफोन लगा होता है, कि सोनू निगम आ रहे हैं सामने से, आप उन्हें इंट्रोड्यूस कराइए और उन्हें मंच पर माइक्रोफोन दीजिए। अब भाई स्टेज संभालते हुए कई परिवर्तन जो है ना मंच पर हमें इमीडिएटली करने होते हैं। मैंने देखा बीच में से स्टेज में जो स्टेज की तरफ पब्लिक में से आइल में चल करके आ रहे थे सोनू निगम, तो मैंने उनके बारे में बोलना शुरू किया, तालियां बजवाई, जोरदार स्वागत हुआ और जब सोनू स्टेज पर आ गए तो माइक मैंने उन्हें दे दिया कि कुछ कहेंगे। अब ये शेड्यूल में नहीं था, सोनू ने माइक लिया, थोड़ा सा गुनगुनाए और फिर मेरे पास आए, कहने लगे लगते तो आप रवि शर्मा हैं लेकिन पहले से ज़्यादा जवान हो गए हैं। पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। भाई गले मिले वो एहसास बहुत खूबसूरत था। सोनू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ईश्वर आपकी लंबी आयु करे। अब भाई वो जो इंसिडेंट था ना स्टेज का गुड़गांव में, वो वीडियो पर रिकॉर्ड किया किसी ने और मुझे पहुंचाया तो मैंने संभाल के रखा है। आज सोचता था बजाऊं सोनू की आवाज़ सुनवाऊं लेकिन वो मिला ही नहीं। कोई चीज़ संभाल के रखने की आदत ही नहीं है रवि शर्मा को। खैर साहब सोनू निगम दिलों में बसते हैं, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनकी आवाज़ सर्वव्यापक है, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र। थैंक यू। आज का चिंतन, आज का विचार, डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का आलेख, हलचल फिल्म का गीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़ें, बंदों पे अपने ऐ दाता इतना टूपकार कर। चिंतन को समेटते हुए याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद कार्यक्रम में मनोरंजन में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding, if you want to send money to your family members, friends, this is the right time because rate is very good. Hai ke 1 pound ke badle they are giving 127.35 rupees and that's maximum 127 rupees aur 35 paise mil rahe hain 1 pound ke badle. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Laika Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: जिंदगी वहाँ सेटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैन्यूब प्राइम लोकेशन
1: हाई अप्रिसिएशन
2: इन दुबई
3: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271
6: सेलिब्रेट Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
7: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 Our line.
10: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
11: तो फिर इंतजार क्यों हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में
10: सच
11: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह
12: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इल्फोर्ड IG2 6HA कॉल करें 07555-506015 बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया Now in Ilford.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
14: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
15: Aur ab Royal Chai laaye hain Smart solution for your business.
14: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
15: Rich, authentic taste every single time.
14: Royal Chai, brewed for business.
15: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
17: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, all the lenders, all the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
16: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
18: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
19: TravelHub.
18: At all protected.
16: Leica.
20: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: बैक टू बैक संगीत आपने एंजॉय किया। और भाई अब बता दें आपको कि प्रोग्राम का ये दूसरा घंटा चल रहा है, हमारी आपकी मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी। एक और व्यक्ति तो भाई चर्चा में है, शेख हसीना, आप भूले तो नहीं होंगे, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पिछले 2 बरस से भारत में है, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने सरेंडर करने की इच्छा जता रही हैं। उनका इस तरह का जब बयान आया तो बांग्लादेश और भारत दोनों में हलचल पैदा हो गई है। क्या सचमुच शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहती हैं? भाई वो आपको याद होगा कि जब आंदोलन जोर पकड़ रहा था वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके और भारत आ गई थी। भारत के गृह मंत्रालय से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई ना तो हमने शेख हसीना को इनवाइट किया था, ना ही हम उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं, वो भारत में जब तक चाहें रह सकती हैं, रह रही हैं, जब वो जाना चाहें जा सकती हैं। शेख हसीना शायद अपनी पार्टी को फिर से एकजुट करके और भाई राजनीति में अपना जो है वर्चस्व वापस हासिल करने के लिए लौटना चाहती हैं। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये फैसला अगर लिया है, घर लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है ये भी वो जानती हैं, और यहाँ तक कि सजाए मौत भी दी जा सकती है। भाई वो तो डिपेंड करता है हालात पर उस समय के, लेकिन वो अगर ऐसा फैसला ले रही हैं तो क्या वो अपने फैसले को कार्य रूप दे पाएंगी, देंगी? और बांग्लादेश अगर वो लौटती हैं तो भारत का इसमें क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, भले इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। खैर ये एक खबर है कि शेख हसीना ने इच्छा जाहिर की है कि वो वापस अपने वतन लौटकर अपनी पार्टी को फिर से संगठित करें। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम गीत संगीत सूचनाएं समाचार और भाई ये जानकारी भी। एक और सूचना आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, और वो सूचना ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ भाई जुड़ा हुआ है, और एक और ये खबर आप तक हम पहुंचा दें कि सेलिब्रेट इंडिया इंडिपेंडेंस डे विद सनातन इवेंट्स, एंजॉय 20% ऑफ टिकट्स टू दिवाली स्टोरी अंटिल 15th of August। आप जानते हैं 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और दिवाली स्टोरी वाले उस दिन तक 15 अगस्त तक ये स्पेशल छूट दे रहे हैं टिकटों में। सनातन इवेंट्स की जो दिवाली स्टोरी है उसकी टिकटों पर 20% की रियायत दी जा रही है। यूज़ द कोड LAIKA20, याद रखिएगा LAIKA20 कोड का इस्तेमाल करके आप 20% रियायत ले सकते हैं अंडर द प्रोमोशन कोड एट diwalistory.com। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क दिवाली स्टोरी के।
1: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Gold.
0: Leica Extra Podcast Update.
4: भाई अपडेट में आपको बता दें कि पॉडकास्ट का नया एपिसोड नंबर 26 इज अवेलेबल। भाई आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है री इन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बता दें दीप राजा की इसमें मुलाकात है मीनल सांबरे के साथ। मीनल के साथ भाई बातचीत में वो डिस्कस करते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल टॉपिक, बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।
8: Dad,
9: what's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
11: But how? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
15: 073-00-99-8823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823।
16: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स, द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा,
17: नजर से नजर,
16: परफॉर्मिंग लाइव इन लंदन ऑन थर्सडे 30th of July एट हैरो आर्ट सेंटर। बुक योर टिकट्स now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
19: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
20: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
19: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
21: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
22: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali's story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Cool. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
4: आज मुझसे कोई दुआ लीजिए या मेरी बेबसी का मजा लीजिए। गमे यार तू ही बता है। लोग कैसे जी लेते हैं इतने दर्द के साथ, आंसुओं के साथ, आहों

0: अरे सॉन्ग भाई, दर्द की अभिव्यक्ति करता हुआ, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। कौन सी फिल्म का, किशोर दा ने किस हीरो के लिए गाया था ये गीत जो दर्द की अभिव्यक्ति करता है? राजेश खन्ना, अपने ज़माने के भाई मेगा स्टार थे राजेश खन्ना। जितनी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ उस समय तक वो मेगा स्टार थे, उसके बाद तो उनके साथ ही काम करने वाले एक और सितारे उन्हें पीछे छोड़ के आगे निकल गए, अमिताभ बच्चन। उनके साथ कौन सी फिल्म थी वो, पता नहीं, वो जिसमें ये दोनों एक साथ नजर आए थे, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, नमक हलाल या नमक हराम समथिंग भाई। उसके बाद अमिताभ बच्चन तो उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां तक शायद ही कोई और अभिनेता पहुंच पाए, लेकिन राजेश खन्ना अपने दौर में, मुझे याद है राजेश खन्ना की शादी हुई जब डिम्पल कपाड़िया के साथ, तो उनकी वो जो रील बनी थी उस समय वो BBC पर दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन भी ऐसे छाए कि जब उन्हें चोट लगी तो उनकी हेल्थ बुलेटिन यहाँ BBC पर ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी, हम देखते थे। तो साहब, हर सितारे का अपना एक समय होता है। हास्य अभिनेताओं में आप देखिए, किसी ज़माने में जॉनी वॉकर का बोलबाला होता था, फिर महमूद आए और छाए, फिर महमूद के बाद असरानी, और ऐसे एक एक करके ना जॉनी लीवर अपनी जगह बना करके भाई टिके रहे काफ़ी देर तक। आजकल राजपाल यादव चर्चा में थे, पर वो फिल्मी पर्दे पर कम और जेल की सलाखों के पीछे ज़्यादा समय आजकल गुजार रहे हैं। हमें उनसे हमदर्दी है भाई, लेकिन कुछ ना कुछ विवाद भी इन सितारों की ज़िंदगी में उठते रहते हैं भाई। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। दो गीत हमने परोसे आपको, ये प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर शुरू हो चुका है। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। 12:15 बजे हैं। लेट मी रिमाइंड यू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस टूडेज रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI, yani State Bank of India, UK, reminding that rate is good. You want to send money to your friends, family members in India? Well, today's rate is 127.35 for £1. 127.35 का रेट है। आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जाके, या फिर ऑनलाइन, और यू कैन यूज़ द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold. Laika
3: Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: Celebrate Krishna Janmashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Food.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
6: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
8: साफो ट्रेवल. Auto protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays. Backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
12: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
13: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
15: Aur bhano bhaiyo, इस सप्ताह के कलाकार का नाम आप सुन चुके हैं, उनकी आवाज में कई गीत भी गूंजते रहे हैं हमारे स्टूडियो से. यस, द आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज यसुदास.

0: यसुदास। कलाकारों की, गायक कलाकारों की भीड़ में एक आवाज बिल्कुल हटकर, सबसे कटकर, और भाई इतना सुरीला स्वर इनका सुनकर मजा आ गया होगा हमारे श्रोताओं को। ये गीत याद दिला रहा है आने वाले त्योहार की, जन्माष्टमी। भाई भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से यहाँ यूके में भी मनाया जाता है और यूरोप में, और भारत में तो इसकी धूम मचती ही है। जन्मदिन मनाने वाले का आज अगर जिक्र करें तो सोनू निगम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। केटला बरस न थी गया छे दीकरा, मने खबर न थी, माइंड योर बिजनेस। झगड़ा कराएंगे आप भाई, जितने का भी यंग है बहुत। 30 जुलाई 1973 में फरीदाबाद हरियाणा में उनका जन्म हुआ था, और बहुत प्यारे इंसान है। आपको बताऊं सोनू निगम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। उनके अलावा भाई आज मंदाकिनी भी अपना जन्मदिन मना रही हैं। मंदाकिनी वो मेरठ में जन्मी थी 1969 में, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन वो ग्रीन आंखों वाली बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री छा गई थी। कौन सी फिल्म में आई थी, राम तेरी गंगा मैली में, भाई वो भी आज ही के दिन जन्मी थी मेरठ में। सोनू सूद पंजाब में जन्मे थे 1973 में। मज़े की बात है कि दोनों सोनू, सोनू निगम और सोनू सूद, दोनों 30 जुलाई 1973 में जन्मे थे, और दोनों जो है इक्वली वो एक गायक कलाकार हैं, तो ये एक्टर भी हैं लेकिन चैरिटी कार्यों के लिए बहुत नाम है इनका। और भाई इसके अलावा एक और अभिनेत्री आज जन्मी थी, बाली भाई, उनके बारे में लेकर आएंगे बहुत सारी जानकारी। याद होगा आपको सुलोचना, सुलोचना लाटकर, वो माँ के रोल में और भाई कैरेक्टर रोल्स में बहुत नज़र आई फिल्मों में, उनका भी आज जन्मदिन पड़ता। 1928 में जन्मी थी ये सुलोचना जी। और भाई आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन रहा हो तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लौटाइए फिर से संगीत की ओर, जिन्हें इंतज़ार है दर्द भरे गीतों का, तो भाई इस गीत में दर्द भी है, आंसू भी हैं, और है लंबा इंतजार।
1: Brought to you by Derry Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मानसी आपको पसंद आया ये गीत, भारती कहती है अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, इमोशनल। भाई ये जिसको जो गीत पसंद आया अपने नाम कर लीजिएगा।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: aur ab कुछ एक सूचना। एक तो ये आपको याद दिला दूं कि दिवाली स्टोरी जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी जो है, इसके हम मीडिया पार्टनर्स हैं। टेकिंग प्लेस एट द ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27 सितंबर। विजिट AXS वेम्बली फॉर टिकट्स। और मेला वेल, लाइका रेडियो इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबे पार्क। ऑल्सो द ब्रेडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st and 2nd August एट सिटी पार्क एंड सेंटिनरी स्क्वायर। तो भाई ये सारे बहुत सारे आयोजन ऐसे आ रहे हैं जिनमें लाइका रेडियो जो है वो पार्टनर है, भाई हम उसका हिस्सा बन करके नज़र आएंगे, चाहे वो मिडलैंड में हो, क्योंकि मिडलैंड में भी हम हैं, मैनचेस्टर में भी हम हैं, और कितने हमारे स्टेशंस हैं। तो हम जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में ये आयोजन हो रहे हैं, जैसे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें भी हमारी भागीदारी है, और दिवाली स्टोरी में मेला में, तो भाई बस सुनते रहिएगा हमारे कार्यक्रम, कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।

वो रूठी है मनाने का नहीं, और वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। भैया सही समय पे बुलाए, सही ठिकाने पे बुलाए तो बंदा जाने का विचार बनाए। अब ये कोई बुलाना हुआ कहाँ, कितने बजे, कैसे?

0: कृष्णा जी कहती है आज सोनू निगम का ही जन्मदिन नहीं है, मेरा बेटा समीर भी आज के दिन जन्मा था। मैंने मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई, सोनू सूद, सोनू निगम और आपका बेटा समीर और भाई और भी बहुत से लोग जो आज जन्मे हैं, जन्मदिन की बधाई स्वीकार करें। हैप्पी बर्थडे।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: साउथ ऑल ट्रैवल वालों का संदेश आपके नाम याद दिला रहे हैं, भूले तो नहीं है ना आप कि साउथ ऑल ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410। They are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
5: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
4: So where do we find something like that now?
5: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, Premium and made it the way our eldest used it.
6: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Be part of a historic grand opening.
7: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
6: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
7: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
6: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
6: बीकानेर वाला परंपरा भी।
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
8: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
9: और बहन भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है। बाली भाई इज हियर, ही विल टेक ओवर आफ्टर 1 o'clock न्यूज। रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। आप इजाजत दें तो हम चलें।

0: कल आने के लिए आज जाना होगा, पर बाली भाई कहते हैं कि स्टूडियो छोड़ने से पहले शेर सुनाना होगा। ठीक है साहब। हाँ, मुंतजिर हो रास्ते में वक्त आमद हर सुबह, और जब जाने लगे तो रास्ता रोके कोई। हमसे इन छोटी मुलाकातों का झगड़ा किस लिए है, अगर हिम्मत तो समय की चाल को रोके कोई।
1: वाह वाह,
0: क्या बात बाली भाई के हवाले स्टूडियो। अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए। बाय बाय, हैव अ सुपर्ब डे।

0: गोल्ड आफ्टरनून टू यू. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com नाउ ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड इज द 387th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स. मैं 3 घंटा दैट्स 3 hours आई शैल बी विथ यू doing a couple of tributes. Of course, ये तो आपने गाना सुनकर सोच ही लिया होगा क्योंकि रवि भाई ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया भी था इस मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर के बारे में. एनीवे आगे बढ़ते हैं. एक दूसरी भी सूचना है कि लवली बर्थडे ऑफ दैट ब्यूटिफुल वंस अपॉन अ टाइम जिनको कहा जाता था कि शी इज काइंड ऑफ अ सेक्स सिंबल एंड दैट इज मंदाकिनी, उनकी भी बर्थडे है. तो उनके बारे में सेकेंड आवर में हम बात करेंगे. और इस आवर में 1 to 4 इट्स मी बाली ब्रह्मभट्ट एंड 4 to 7 आज सैंडी शाह अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएंगे. मैं जल्दी आपको बताता हूँ हु इज गोइंग टू कम. मोस्ट प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी वीर. यस एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इट्स गोइंग टू बी द विनिंग शो ऑफ राजपतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 4 to 7. उनका साथ दीजिएगा एंड मैं 4 बजे तक आपके साथ हूँ. अभी द मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर, जैसे मैंने कहा, who was born in Faridabad, Haryana on 30th of July 1973. His wife Madhuri Ma. Yes. Inka beta hai Nivan. He is amazing. He's growing up as such a beautiful young boy and he is going to create a name as a singer himself. He's showing signs of it. लेकिन एजुकेशन सबसे पहले, दैट्स व्हाट सोनू निगम सेज. यू एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद यू गेट इनटू सिंगिंग. इनके पिताजी अगम कुमार, यस मम शोभा जी, शोभा गढ़वाल एंड सिस्टर्स तीशा एंड मीनल. नाउ सोनू निगम के बारे में मैं अगर बताता और पूरा 2 hours मैं उसका ट्रिब्यूट करता, क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है. वी ग्रू अप इन द इंडस्ट्री टुगेदर बट ही वेंट वे अहेड, स्काई रॉकेट की तरह स्काई में चला गया एंड ही इज सो फेमस. ही डिड नॉट हैव कमर्शियल बॉलीवुड प्लेबैक हिट सॉन्ग्स इन द 1980s एज ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग स्टेज शोज विद हिज फादर एंड ओनली मूव टू मुंबई इन 1990 to begin his professional playback singing career. So मैं एक ही गाना मैंने जो सुनाया आपको वो ही सुना सकता हूँ और आगे देखेंगे अगर मौका मिला तो मैं कुछ और गाने भी डाल सकता हूँ. बेवफा सनम का 1995 का गाना, दैट इज़ द बेस्ट सॉन्ग एवर. एंड मेरे साथ दोस्ती कैसे हुई वो बताने जाऊँगा तो शो निकल जाएगा यहाँ से. सो All I'm trying to tell you is background. Born in 1973, he began singing on stage with his father Agam Kumar Nigam around the age of 4, and he performed classical tracks and classic tracks really. Sab Rafi saab ke gaane wo gaata rehta tha stage ke upar aur stage shows mein, wedding performances mein. Unke pitaji ke saath bhi wo gaane gaata tha aur mimicry bhi karta tha. And appeared briefly as a child actor in films like Pyara Dushman 1980 ki and Betab 1983, and rather than working as a playback singer, and then the transition to playback officially moved to Mumbai in 1990 to launch his professional career. Yes, breakthrough major hits jaise ki maine sunaya aapko, Achha Sila Diya Tune Mere Pyar Ka. और टी सीरीज़ ने बहुत ही अच्छा बैकिंग दिया इनको एंड मेजर एल्बम्स दीवाना ओनली अराइव्ड लेटर इन द 1990s. उसके बाद तो इतने अच्छे अच्छे फिल्मी गाने, मैं हूं ना जैसे गाने. एंड ही इज कमिंग टू टाउन आई थिंक फॉर अ शो एंड ही ऑलवेज हैज अ हाउसफुल. सो सोनू निगम्स बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्रदर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Dad.
6: What's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
8: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
9: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
12: Southall Travel, at all protected.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
16: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
15: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
17: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
18: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
19: Deirdre, look, it's the Bottomleys this time, sliding across their car bonnet.
20: Leave them be, Philip. They just claim confident.
19: Claim confident?
20: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
19: Deirdre? Deirdre? Come back here.
21: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
22: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जेम इन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट। बाली ब्रम्बर्ट जेम इन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।

0: जाने के बोल।
1: एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ फ्रॉग इन द थ्रोट। गाने के बोल हैं, बहुत दूर मुझे चले जाना है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार, दिस इज फॉर द गैंग दैट इज गोइंग बहुत दूर टू लेस्टर, एंड दैट्स वीरू वकानी एंड गीता सोलंकी। दे आर गोइंग टू लेस्टर टू प्ले फॉर देवाशीष दासगुप्ता। वेलकम देवाशीष, द टीम ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस बाय सुर संगीत टू बॉम वोयाज।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: गिफ्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली,

0: Hangama, hangama, hangama. That's Anu Malik. But why am I playing these particular songs? I'm playing these songs because they are from the films of Mandakini. Mandakini ji ka asli naam Yasmin Joseph Thakur, one of the leading actresses of late 1980s, samjho to a sex symbol, and she was active only for 11 years, 1985 to 1996, lekin bahut hangama kar diya. She was actually discovered, you can say, by Raj Kapoor when she was sweet 16. Ji haan, 16 saal ki thi, and he gave her the name Mandakini. And he did the film Ram Teri Ganga Maili for her debut, opposite his son Rajiv in Ram Teri Ganga Maili, 1985 ki baat hai. Uske baad kafi filmein aayi, hangama ho gaya, and it was Dance Dance, Commando, Pyar Ka Mausam, प्यार के नाम कुर्बानी, प्यार का मौसम नहीं, प्यार के नाम कुर्बानी, यस, एंड जीते हैं शान से, वो एक मूवी थी, मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस डांस, एंड कहाँ है कानून, वो थी आदित्य पंचोली के साथ, एंड प्यार करके देखो, दैट वाज विद गोविंदा, बट she could not match the success of Ram Teri Ganga Maili. Ye sab filme aayi gayi, matlab, you know, it was not happening for her. And eventually she said goodbye to Bollywood after 1996 film Zordar. Zordar ek film aayi thi, that was in 1996. Uske baad she left the industry. Ab इनके बारे में अगर मैं कहूँ, इनके हस्बैंड के बारे में, एक छोटा बच्चा था जिसने एज अ बेबी इन मर्फी रेडियो एड्स इन 1970s और 80s में, वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो था कागियूर टी पिनपोचे, रिनपोचे, रिनपोचे ठाकुर, Kagyur T. Rinpoche Thakur. Now he was a former Buddhist monk, and Mandakini married him. She got married to the former Buddhist monk, and she herself embraced Buddhism. Do bache inke, Rabbil, and daughter hai, uska naam kuch Rabze. Haan. अब आगे बढ़ूं तो मैं कुछ गाने उनके सुनाऊंगा, लेकिन कुछ इतने ख़ास गाने नहीं हैं, तो जितने भी मैं सुना सकूं वो सुनाऊंगा, अच्छे अच्छे गाने, उसके बाद हम वापस अपनी रेलगाड़ी को पटरी पे डाल देंगे, एंड प्ले सम अदर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बट इन द मीन टाइम विशिंग मंदाकिनी ऑन लाइक अ गोल्ड. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट with Gold Afternoons, available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com. Also available on Radio Player app and on Leica Radio Midlands. Mere baad Veer aayenge 4 baje se 7 baje tak, and we'll have Raj Patan on Leica Radio Midlands from 4 to 7. Aage badhte hain.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, we have your £1 in British sterling, which can get you up to 127.55 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Chalo jaiye ek nava safar par.
5: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मच्छीसन फॉल्स
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
11: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ, कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
13: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. पूरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल।
16: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड यर ऑल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोज।
15: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ।
17: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
18: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
17: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
18: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे।
17: दर्शन पण अने यूरोप पण।
18: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
17: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
18: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: व्हाट अ ब्यूटी है। यही फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें एक गाना जो था उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज देयर वर सम बोल्ड सीन्स ऑफ हर, बट देन यही लोग तो हिट करते हैं फिल्म को।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ, जब राज कपूर जी ने उनको नाम दिया था मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में, और उसमें there was a bit of a कॉन्ट्रोवर्सी और लोगों ने काफ़ी हंगामा मचा दिया था बिकॉज शी हैड कपल ऑफ पार्शियली न्यूड सीन्स इन टू सीक्वेंसेस इन राम तेरी गंगा मैली। वही पब्लिक तो है जो फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है, जो रोना धोना करते हैं, बाद में चिल्लाना करते हैं, लेकिन वही जाएंगे तीन तीन बार फिल्म देखने के लिए, और यहाँ चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ पे फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट बना देते हैं। सो इट्स यू कैन से कम सा एंड टू वे इट वर्क्स, है ना?
1: ये है लाइक अ गोल्ड।
0: ओके, आई हैव गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू हियर। यस, व्हाट इज द गुड न्यूज? यू हैव बीन लिसनिंग टू us every day enhancing a few points of what is happening on Laika. Laika radio network is being all over the place. That's right, Ragasan. Laika radio network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at laikaradio.com. ab dekha jaye to Kavita Krishnamurti ji bhi aa rahi hai, and it'll be full publicity by none other than Laika. Laika Radio Network is the exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story, taking place at the OVO Arena, Wembley on Sunday, 27 September. Visit AXS or Wembley for tickets. And the Mela of 2026, Laika Radio is exclusive radio partner of Leicester Mela again on 15th and 16th of August at Abbey Park. Also the Bradford City Mela on 1st and 2nd of August. Yes, this weekend at City Park and Centenary Square. Laika is everywhere.
3: Like a gold.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
3: Like a gold.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: And Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Laika Extra Podcast Update.
0: Podcast update. It's podcast episode number 26 and the title is Reinvention and Entrepreneurship. Entrepreneurship, Deep Raja speaks to Minal Sambre from Samaria Global Finance Limited, an insight into the banking sector. Now, Laika Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Laika Extra is here.
5: Laika Gold.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
7: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: विजिट travelhubworld.com
2: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
8: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
9: Dad,
10: what's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: Anuj Chopra Foundation proudly presents an Evening of Elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
14: Shaam chalne lage
13: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
15: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र

0: ये कुमार सानू और साधना सरगम के साथ जो आवाज़ है मुकुल अग्रवाल, कितने खूबसूरत गाने इन्होंने गाए हैं मुकुल अग्रवाल के। कभी मौका मिला तो इनके बारे में मैं बताऊंगा और उनके गाने भी सुनाऊंगा। अंडर एस्टिमेटेड सिंगर, लेकिन व्हाट अ वंडरफुल वॉइस। फिल्म है हस्ती, 1992 की फिल्म। And a big hello to Veer Bhadar Singh in New Jersey.
1: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. This is Leica Gold across Greater London.
0: Thank you for your wonderful feedback, Veer Bhadar Singh of New Jersey. USA, इन्होंने अच्छा गाना भेजा मंदाकिनी का, तू लड़की नंबर वन है। अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं सुनाऊंगा आपको ये गाना इन द नेक्स्ट आवर ऑफ कोर्स।

0: What a song, what a song. Mai Hoon Bali Brahmbhatt on Laika Gold with Gold Afternoons. And jis shakhs ko mai bulane wala hoon, he is one of the best singers in India. And of course, he has been singing for so many years and a voice that is so much in demand. UK mein wo naam sunte hi houseful ho jata hai. To mai unko bulata hoon, none other than Debashish Das Gupta on, we can say, Laika Gold. Aur logo taaliyon se swagat karte hai unka. Debashish Das Gupta, aapka Laika Gold mein swagat hai.
1: Thank you so much, Bali. How are you?
0: I'm fine, thank you. And congratulations, aapka house full ho gaya.
1: No, thanks to God. Thank you.
0: Thank you so much. Kaisa lag raha hai mausam hamare UK ka?
1: Yeah, mausam to bahut garam tha jis din main aaya tha. But today at least little better.
0: A little better.
1: Na?
0: हाँ जी हाँ जी. तो अभी मैंने आपका गाना जो सुनाया रहने को घर नहीं, वो दो लाइन आप भी सुना दो ना. लोगों को, लोग सोच रहे हैं कि कैसी आवाज होगी, कैसी आवाज होगी, तो वही आवाज में आप सुना दो ना दो लाइन.
1: ये गाना हम लोग ने एक ही साथ गाया था ना.
0: हाँ,
1: मैंने सुमर शानू ने, मतलब
0: जी
1: बहुत फ्यू लाइन्स हैं जो हमारे अलग अलग डिवाइड हुए थे.
0: हाँ जी.
1: But maximum song is all together, हम लोग ने एक ही साथ गाया था.
0: हाँ, तो दो लाइन सुना दो.
1: मेरा लाइन था,
0: हाँ,
1: हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रखे पत्थर पे सर थक के सो जाते हैं. ये मेरा लाइन था. फिर रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला.
0: वाह वाह वाह.
1: अभी मैं भूल भी गया हूँ ये गाना.
0: वो तो होता ही है, सडनली कोई बोल देता है तो सोचना पड़ता ना अल्फाज सब. वो तो क्योंकि हमेशा गाते हैं तो किताब सामने ही होती है तो सहारा मिल जाता है. लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ,
1: आर्टिस्ट आपने इतने सारे गाने गाए हम लोग के साथ, अभी हमने इतने सारे दिन गुजारे हैं, बाहर शो किया हमारे साथ.
0: हाँ जी,
1: मैंने दोनों मिलकर.
0: हाँ जी,
1: सो यू नो एवरीथिंग है ना.
0: हाँ, मैं विनोद राठौड़ के साथ बात कर रहा था लास्ट वीक एंड वो भी याद कर रहा था, बोले देवाशीष के साथ हमने 11 शोज किए थे अमेरिका में, जितेंद्र और नितिन मुकेश और राजेश रोशन ऑर्केस्ट्रा एंड संजय दत्त एंड श्रीदेवी के साथ, है ना. तो वो भी एक अच्छा जमाना था. आप बैकग्राउंड में
1: भी तो थे ना हमारे साथ, आप भी तो थे ना.
0: जी जी जी, बहुत मजा आया था मुझे. अभी मुझे इतना बताइए, कल रफी साहब को याद हम कर रहे हैं, है ना. तो आप, देयर इज नो बेटर सिंगर ऑफ द वॉइस ऑफ रफी मेरे ख्याल से देन यू.
1: आपका प्यार है मेरे लिए, बट ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो उसमें से मैं भी एक छोटा मोटा हूँ. और रफी साहब तो रफी साहब ही हैं, हम लोग खाली फॉलो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पास.
0: यू आर सो हम्बल, यू आर सो हम्बल.
1: इट्स वेरी ट्रुथ एंड ऑलवेज वी ट्राई कि रफी साहब को गाने के लिए इज अ वेरी वेरी नेसेसरी टू रियाज, अदरवाइज यू कांट सिंग. वेरी टफ सिंगर इन द वर्ल्ड आई थिंक.
0: यस, ऑफ कोर्स. ये तो बात सही है. और मैं एक बात पूछना चाहता था कि सपोज मैं आपको एक सिचुएशन में खड़ा कर दूं कि आपको अभी अनाउंस करने वाले हैं और आप बैक स्टेज से आलाप लेते हुए आप स्टेज पे आएंगे रफ़ी साहब का गाना गाते हुए, तो वो कौन सा गाना चुनेंगे आप जो आलाप लगाते हुए आप एंट्री मारेंगे स्टेज पे, कौन सा गाना होगा रफ़ी साहब का.
1: अभी एक गाना थोड़ी है रवि साहब का कि मैं ये गाना चुनूंगा. आप मुझे फंसा रहे हो गाने के लिए, मैं जानता हूँ कि कौन सा गाना चुनेगा और गा के बताओ. राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
0: पकड़ लिया आपने.
1: तो बहुत सारे गाने हैं,
0: प्लीज सुना दो. मैं एक तो सुना दो.
1: इट्स नॉट इजी टू सिंग लाइक दैट,
0: आई नो दैट.
1: बहुत गाने हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं. और हम सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आज ये मूड के ऑडियंस है तो शायद ये गाना अच्छा रहेगा. इट्स नॉट नेसेसरी सेम सॉन्ग एवरी टाइम. आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लिटिल डिफरेंट जो
0: जी
1: बहुत कम होते होंगे स्टेज पर, मैं उन गाने को भी कोशिश करता रहता हूँ।
0: अच्छा, जीने की राह। ओके जितेंद्र, आप उनके लिए बैकग्राउंड से गाते थे अमेरिका में, तो वो कौन सा गाना था?
1: गाते थे ना वो मस्त बहार होगा फिर आने से उसके आए बहार,
0: आने से उसके आए बहार। दो लाइन प्लीज। अभी वहां से
1: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा,
0: वाह
1: मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, ये जो आवाज कानों में गूंजती है ना, मैं इतना बेताब हूँ ऑफ हियरिंग यू व्हेन आई कम ओवर टू लेस्टर। एंड हु वुड यू गिव क्रेडिट फॉर द होल शो, किसने कमाल कर दिया?
1: मिस्टर बी वसंत भटका।
0: यस
1: मिस्टर बी, जो कि इज अ वेरी वेरी डिवोटेड अबाउट कोई भी शो होता है। एंड आई नो हिम 94 से मैं उनको जानता हूँ, सो I always I admire him.
0: Yes.
1: And I learned so many things Mr. B. So unke wajah se hi maine itna himmat kiya ki chalo itne saal ke baad then I come again to Leicester.
0: And kya response diya? Log bhulte nahi aapko? Log bhule nahi aapko? You know?
1: Yes. That's, I'm very lucky ke do week pehle unka message aaya, Debu, the house is packed now.
0: ये okay, बात
1: ये तो अच्छी बात है।
0: बहुत अच्छे।
1: थैंक यू।
0: तो सैटरडे को मिलते हैं अपन, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड म्यूजिक कौन कर रहा है?
1: म्यूजिक हमारे एक सिंगर हैं, रेखा जी हैं हमारे साथ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: सारेगामा में आपने सुना ही होगा था, अपना सजदा सिस्टर में।
0: हाँ, इनको मैं मिलता रहता हूँ लंदन में। हाँ जी, वीरू वकानी और गीता। हाँ जी,
1: दिलीप भाई है वीरू जी का, उनके भी कुछ म्यूजिशियंस हैं।
0: हाँ,
1: मैं नाम इतना कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट
0: हाँ जी,
1: ऑल टुगेदर एंड दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस, दे आर
0: फैंटास्टिक। गुरु पूर्णिमा इवेंट, राइट, ग्रेट। अपने जो बाइबल है, जो गीता, शी इज इन अमेरिका एट द मोमेंट एंड फॉर अ गुरु पूर्णिमा इवेंट, सो शी विल बी ज्वाइनिंग आई गेस लेटर ऑन। बट ऑल द बेस्ट टू यू, एंड फ्रॉम आप लाइका गोल्ड के लिसनर्स को क्या कहना चाहोगे?
1: एंड थैंक यू सो मच अबाउट लाइका रेडियो कि आप मुझे सुन रहे हैं, और वो भी मेरे दोस्त के थ्रू, बाली के थ्रू, एंड एवरीबॉडी आई वांट टू विश द लाइका जो लिसनर हैं, थैंक यू सो मच।
0: ओह लवली लवली, एंड मैं चाहूंगा कि लंदन जब आओ तो हमारे स्टूडियो में जरूर आना और हम कुछ महफिल जमाएंगे। ओके,
1: श्योर श्योर बाली,
0: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देव आशीष दास गुप्ता, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग ब्रदर।
1: थैंक यू सो मच।
0: बाय बाय
1: Bye-bye.
0: So that was Deb Ashish Das Gupta. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch. And of course, the rates that keep fluctuating, your £1 in British sterling can get you up to the latest rate being 127.55 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply. State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold. Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store. This part of the show is brought to you by Dhurandhar. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Chawal ho best, sab kare test, desh aur rice ka hai zamana,
2: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
6: Dreaming of paradise?
7: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
6: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
7: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
6: At all protected.
8: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
9: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
8: सच?
9: बिल्कुल. देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
10: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA. कॉल करें 07555-506015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया now in Ilford.
11: Two businesses.
12: Same town.
11: Same service.
12: One appears on page one of Google.
11: The other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai.
17: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 02089510111 or visit sonatours.co.uk. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 02087 672142.
18: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारे आर्टिस्ट यसुदास, एंड दिस वाज अ फिल्म फ्रॉम फिल्म दादा. फिल्म दादा का गीत इतना खूबसूरत अंदाज से, कितने खूबसूरत अंदाज से इन्होंने गाया, 1979 का गाना जो है. एंड म्यूजिक बाय उषा खन्ना और लिरिक्स लिखी थी कुलवंत जानी ने. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक यसुदास.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Recalculating. Family issue ahead. Property paperwork on the left. Immigration deadline approaching. Business dispute in 200 yards. When life takes an unexpected turn, let Rack Law Solicitors guide you with clear, trusted legal solutions. Family, property, immigration and corporate law handled with care and expertise. Call 0203 345 2000. Rack Law Solicitors. Your matters, our expertise.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Minar Jewelers Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
7: Hello London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.
8: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: एंड यस यू आर लिसनिंग टू लाइक अ गोल्ड विद मी शीना. बहुत ही खूबसूरत सा दिन है थर्सडे, जुलाई द 30th. होप यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन. और यू नो आजकल ये कहते हैं ना थर्सडे इज द न्यू फ्राइडे, कि आपका थर्सडे अब तक न्यू फ्राइडे बना है. आर यू ड्राइविंग बैक होम? ओ यू आर जस्ट बेसिकली चिलिंग, या फिर आप घर में खाना बना रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि ओके इट्स गोना बी लाइक फ्राइडे इज कमिंग, इट्स वेरी वेरी सून. सो बताइए मुझे क्या चल रहा है आपके वर्ल्ड में. एंड वी प्लेड बैक टू बैक म्यूजिक. और इनफैक्ट मैंने बजाए किशोर कुमार के साधना सरगम की आवाज़ में ये नीले नीले अंबर, यू नो आई प्लेड दैट फ्रॉम द मूवी कलाकार. बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा गाना, इसको जब भी आप सुने ना किसी की भी आवाज़ में, इट रिवाइव्स लॉट ऑफ योर ओल्ड मेमोरीज. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पुरानी पुरानी ना, वो कहते हैं ना कि पोटली खुलती है यादों की, एंड दिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट राइट. एंड प्रायर टू दैट वी प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग गाना फ्रॉम करण अर्जुन, जो कि बहुत बड़ा धमाल था, भंगड़ा पाले आजा आजा. एंड हु डजंट नो द डुओ शाहरुख खान और सलमान खान, क्या आप लोगों को मालूम है? इट वॉज अ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप उन्होंने दिल्ली का जो था वो डिसाइड कर लिया था राइट आफ्टर दे वर शूटिंग फॉर दिस सॉन्ग. और उन्होंने बैग पैक किए, इतना उन्होंने इन्जॉय किया इस गाने में कि दे डिसाइडेड लेट्स जस्ट ड्रोव टू दिल्ली. एंड यू नो व्हाट, एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने यह भी कहा था कि ममता कुलकर्णी ने उनको बहुत ही डांटा था इस गाने में. Because both of them were having fun. What do you expect, Shahrukh Khan and Salman Khan? And yes, but Mamta Kulkarni ne unko bahut daanta tha ki please aap seriously gaana kar dijiye. And this gana was a super duper hit. Movie was a blockbuster. Aur kya kahun main? Mere Karan Arjun aayenge. Definitely aayenge. Dharti ka chheena phaad ke aayenge. Aa gaye definitely. And I'm still looking forward ki abhi koi aisi movie aaye, we see cameo. Matlab Shahrukh ki movie mein Salman aa jaate hain. Salman ki movie mein Shahrukh aa jaate hain. बट कहीं तो ऐसा होगा ना कि दोनों इकट्ठे आए एंड दे गोना गिव अस लॉट ऑफ यू नो धमाल व्हिच वी आर लुकिंग फॉर राइट. बट दिस वाज अ बैक टू बैक म्यूजिक एंड नाउ ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, खूब सारा अच्छा म्यूजिक भी प्ले होगा. द शो दैट्स अबाउट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड मोर एंटरटेनमेंट. दिस इज शीना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 in British sterling today could get you up to 127.50 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or simply using the Yono SBI mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Gold, traffic and travel.
2: This is Martin with your travel. It's slowing on the A4020 Uxbridge Road between the A312 The Parkway and Southall Park. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart Roundabout to the Target Roundabout and then on to North Holt Station. Queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lane Jarry today. And the A40 Western Avenue slowing westbound before you get to Gypsy Corner. The A3 West Hill busy northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road to the Tube, and severe delays on the Elizabeth line between Whitechapel and Shenfield is due to problems with the signals, and no service on the Piccadilly line between Uxbridge and Cockfosters, that's due to engineering works. That's your latest traffic and travel.
3: Leica Gold.
4: It's official. Tesco Pet Insurance is the dog's biscuits. At Tesco, we love pets, and we've been awarded a Which Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat gets the cream of pet insurance. To get a quote, search Tesco Pet Insurance. Cats and dogs aged 8 weeks or over. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Provided by Pinnacle Insurance Limited.
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
6: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
7: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
6: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
8: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 PM to 8 PM at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
9: Dad.
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
13: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
12: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
13: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
14: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
15: हिमालय कारपेट्स की धधकती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
17: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
18: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
19: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
20: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
21: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: And yes, Southall Travel is pleased to announce that the ACDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 028-574-8410 at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Like our gold.
3: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected.
4: So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
5: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: Travelhub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथे।
9: सीरीन हॉलिडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenehollidays.co.uk पर।
11: हेलो लंडन, द वेट इज ओवर। कल्याण ज्वेलर्स इनवाइट्स यू टू द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ Spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
12: Travel ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
13: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
14: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: What a romantic गाना, isn't it? No doubt about it. कोई second thought ही नहीं है. बट चलिए बात करते हैं, कुछ लोगों का चाय पीने का टाइम हो गया. वैसे तो कभी 4 o'clock होता है, 5 o'clock, but I see a lot of people having chai during this time. Are you one of them? And एक सवाल था जो basically मेरे दिमाग में चल रहा था, basically जिस पे हम एक debate भी कर सकते हैं, but I really want to know your viewpoints. कि गर्म चाय के साथ क्या बेस्ट लगता है? Is it gonna be पकौड़े, समोसे, बिस्किट या मट्ठी? या आर यू इन टू दैट कॉशियस माइंड और कैलरी डेफिसिट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि उसके आप उसके तरीके से चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, और एल्स यू नो इवन इफ यू गोना हैव अ ब्लैक टी, आई विल नॉट हैव द डब्बे वाली चाय, आई विल जस्ट हैव अ नॉर्मल चाय, नो शुगर प्लीज, एंड देन उसके साथ कुछ भी नहीं खाएंगे. यू नो पहले ज़माने में याद है लोग चाय की वो आती थी ना जो प्याली, उसके साथ इतना कुछ खाने को आता था. बट टेल मी अबाउट इट ऑनेस्टली एंड यू नो कि आप लोगों को चाय के साथ क्या पसंद है, क्योंकि पता है कि अभी मेरा भी बहुत चाय पीने का मन कर रहा है. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट इज दैट वन थिंग, बिकॉज इफ आई एम देयर ऑन द शो आई एम गोना रिवाइव लॉट ऑफ योर ओल्ड मेमोरीज. अभी रुकिए आप, एक और बहुत बड़ा धमाका थोड़ी देर में मारूंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग चाय की प्याली. एंड एज आई ऑलवेज से विद योर ओन घर वाली, राइट, व्हाट डू यू लाइक विद योर चाय, गरम चाय? एंड आई नो देयर लॉट ऑफ कॉफी लवर्स आउट देयर, आई एम वन ऑफ देम apparently, but chai ke saath ye sab cheezein, they look you know far more better, or they taste far more better actually. So let me know, barish ka mausam ho aur chai ki pyali aur uske saath kya ho? Yes, WhatsApp me and let me know about that. 07-424-2323 is the number, and this is Sheena. Thank you so much.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.70 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by simply downloading the app SBI Yono mobile app and using it. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
1: Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. The A4020 Uxbridge Road still slowing between the A312 the Parkway and Southall Park. A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart Roundabout to the Target Roundabout and on to North Holt Station. You're queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lane Gyratory, and the A40 Western Avenue slow westbound before you get to Gypsy Corner. A3 West Hill heavy northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. To the Tube, no service on the Piccadilly Line westbound between Acton Town and Heathrow Airport. It's due to a points failure at Acton Town, and there's no service on the District Line between Turnham Green and Ealing Broadway, again down to that points failure. That's your latest traffic and travel.
4: Like a gold.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Obo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
9: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Eviction, tenant dispute, property ka masla. Kenton Solicitors London landlords aur tenants ke liye fast action lete hain aur residential aur commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
16: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: फ्रॉम यादों की बारात, बहुत ही खूबसूरत सा गाना बिल्कुल जफाशा भोसले एंड किशोर कुमार, आई लव यू स्वीट सा गाना, स्पॉन्सर्ड बाय डेयरी वैली।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Making summer feel better. This is Leica Gold.
0: And yes, it's a very, very special day. Of course, we all know it's July the 30th, but what's special about it is the birthday. और एक इतने अच्छे खूबसूरत आवाज का आज बर्थडे है ना कि जिनको कोई इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है। सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे सोनू निगम, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से ही इज कमिंग टू यूके फॉर परफॉर्मिंग लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन 23rd of August, और उनका आज बर्थडे है। वी ऑल नो कितने वर्सेटाइल बेसिकली उनकी सिंगिंग है। यू नो आई ऑलवेज हैव टू से कि सोनू निगम जैसी आवाज़ किसी की हो ही नहीं सकती। एवरी वन हैज़ गॉट देयर ओन स्टाइल, बट ही इज़ क्वाइट टेक्निकली ब्रिलियंट। और इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री में अगर जैसे नाम लिया जाता है किशोर कुमार का, यू नो मोहम्मद रफ़ी, तो डेफिनेटली सोनू निगम इज़ वन ऑफ देम। एंड ही सो सो डाउन टू अर्थ। मुझे मौका मिला था उनका एक इंटरव्यू करने का, एंड दिस वॉज रिसेंटली ओनली, जब उन्होंने वो रिक्रिएट किया था भिजूरिया वाला गाना जो उन्होंने 90s में गाया था। And he, the way he answered, it was more of like with such a warmth, such a beautiful, beautiful answer जो उन्होंने दिया था, वो आप हमारे social media पर जाके देख सकते हैं। But beyond that, it is all about humbleness और उनकी आवाज़ में जो जादू है, जो magic है, no one can recreate that, right? हर गाने में ऐसा लगता है कि एक तो हर actor के साथ वो basically match कर जाते हैं, और उनकी आवाज़ ऐसी है कि हर गाने की एक अलग ही, you know, basically पहचान बना देती है। So I'm gonna play you. Next गाना थोड़ा सा different है, पर इतनी बुलंद आवाज़ है ना कि उसके बाद आप बस यही सोचेंगे कि मुझे तो बस I just want to basically listen to Sonu Nigam back again and again, again and again. और बहुत कुछ उन्होंने जो है कमाया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो उन्होंने कमाई है वही है सब लोगों का प्यार। So उसी प्यार के साथ let's play this beautiful track from the movie दिल से। याद आया कि नहीं आया कि मैं याद दिलाऊँ कि प्ले करूँ? Let's get on to the vibes of Sonu Nigam with this movie Dil Se Satrangi Re. Duniya mein kai sare rang hai, but Satrangi Re inki awaaz mein definitely saat suron ke saath saath

0: बहुत ज्यादा आई लव यू हो रहा है राइट. एक से दो गानों में आई लव यू हैज बीन द प्रोमिनेंट थिंग. इट्स ओके राइट. द डेफिनेशन ऑफ लव इज ऑलवेज द बेस्ट वन रादर देन हेट्रेड और एनीथिंग एल्स. होप यू आर एंजॉयिंग द शो. दिस इज शीना सिटिंग इन फॉर सैंडी ओनली ऑन लाइक अ गोल्ड. और सोने की तरह आपकी बातें भी बहुत ही खूबसूरत हैं. थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजेस. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द चाय, द यू नो द क्रेजी पन अबाउट द चाय एंड व्हाट डू यू रियली फैंसी विद द चाय. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन मी लॉट ऑफ आंसर्स बट आई एम गोइंग टू जस्ट पॉसिबली टेल यू कि सबसे इंटरेस्टिंग आंसर मुझे किसका लगा एंड दैट इज गोल फ्रॉम टूटिंग. गोल इज सेइंग दैट मुझे चाय के साथ कुछ भी नहीं चाहिए. मुझे चाय का मजा नहीं खराब करना है. सो आई डोंट वॉन्ट एनी बिस्किट मट्ठी एंड ऑल दैट स्टाफ एंड नमक पारे और एनीथिंग एल्स. यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय द टी और एक एक सिप सिप चाय की प्याली. और वो कहते हैं चुस्कियां लेके लेना चाहती हूं. सो डेफिनेटली एवरीवन हैज गॉट देयर ओन वाइब्स. डोंट वरी अबाउट इट. एंड इन द नेक्स्ट आवर देयर इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप एज वेल. बट राइट नाउ लेट्स नो कि करेंसी का क्या रेट है और अगर आपको पैसे भेजने हैं तो सोचना क्या.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 128.63 Indian rupee, 373.9 Pakistani rupee, 452.23 Sri Lankan rupee, 166.28 Bangladeshi taka, 88.20 Afghan Afghani, 174.17 Kenyan shilling, and 1.34 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back. When you use the code Leica, download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Golden Pounds is trading at £98.22 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Leica Gold.
1: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. Delays on the M4 this evening onto the elevated section eastbound. You head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A4020 Uxbridge Road still slowing between the A312 the Parkway and Southall Park.

0: premier tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
2: Southall Travel, at all protected.
7: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewellers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewellers, also at Belgrave Road, Leicester.
8: SonarTours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonarTours on 0208-951-0111.
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
10: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
11: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
10: सच?
11: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
12: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला, 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
13: Gold Drive with Sandy Shah. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: फ्रॉम द मूवी जाबाज हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में एंड प्राइड टू दैट इट वॉज बरसात हमको सिर्फ तुमसे प्यार है और अ कॉम्बिनेशन राइट कंप्लीटली ऑपोजिट सो गाइज वट एवर यू हैव जस्ट इंजॉय इट राइट और करते हैं बात बिकॉज आई डेफिनेटली टोल्ड यू इन द लास्ट आवर आई एम गोना मेक श्योर दैट आई एम रिवाइविंग लॉट ऑफ योर ओल्ड मेमरीज दो पुराने दिन यू नो आई एम नॉट गोना से पुरानी जीन्स और गिटार बट आज का सिंपल सा सवाल अगर आपको सिर्फ एक चीज वापस लानी हो अपने पुराने जमाने से वैसे तो अभी भी मतलब बहुत पुराना नहीं हुआ है बट देर माइट बी सर्टन थिंग्स तो क्या लेकर आएंगे आई गिव यू नो छोटी मोटी ऑप्शन एंड देन यू लेट मी नो सबसे पहली ऑप्शन है बिन मोबाइल वाली जिंदगी ट्रस्ट मी बिन मोबाइल वाली जिंदगी कितनी ज्यादा खुशी भी देती है इट डज हेल्प यू नो देयर इज ऑलवेज प्रोस एंड कॉन्स पर उतनी एंग्जाइटी भी देती है तो बिन मोबाइल वाली जिंदगी जो है पुराने जमाने वाली वो चीज़ जो है आप चाहेंगे या वो एक छोटी सी एक दो रुपए की टॉफी मिलती थी वो चाहिए या दूरदर्शन के वो संडे जब सारा यू नो परिवार इकट्ठे बैठ के कुछ ना कुछ सीरियल्स देखता था मूवीज देखता था लेस वॉज मोर आई शुड से दैट या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसेट का जमाना रादर देन नाउ जो भी गाना आपको प्ले करना है यू कैन प्ले ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर वो रेडियो और कैसेट वाला माहौल जो क्रिएट होता था वो स्पेशल गाना जो बजता था सारे लोगों को पुरानी यादें वापस आ जाती थी राइट सो यू गाइज हैव टू टेल मी अगर आपको सिर्फ एक चीज वापस लानी हो टाइम मशीन आ गई आपके पास पुराने जमाने की तो क्या लेकर आएंगे इजंट दैट इंटरेस्टिंग वन बिकॉज आई एम जस्ट वंडरिंग मुझे क्या चाहिए बट आप लोग डेफिनेटली मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए वो पुरानी चीज जो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपको आज मिल जाए तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी या फिर चाहिए ही नहीं कि यू नो आई एम थिंकिंग अबाउट कैसेट आई एम थिंकिंग अबाउट वो कैसेट की जब रील निकल जाती थी ना कितना डिफिकल्ट होता तो उसको वापस डालना है ना आई रिमेंबर कभी वो लोग उंगली से कर रहे हैं कभी वो यू नो सिजर्स से कर रहे हैं कभी कैंची से कर रहे हैं कभी यू नो दे यूज टू डू इट थ्रू पिन्स एज वेल ओएमजी लॉट ऑफ मेमोरीज राइट एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट एरा यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू सी कौन सी ऐसी ऑप्शन है बिन मोबाइल वाली जिंदगी एक दो रुपए वाली टॉफी दूरदर्शन के संडेज या फिर कैसेट का जमाना
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.20 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by SBI Yono mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
1: Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. Delays on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A4020 Uxbridge Road has now eased between the A312 The Parkway and Southall Park. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. You're queuing on the A406 North Circular Road, both ways at the Hangar Lane Gyratory. It's slowing on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner to the Tube and severe delays on the Elizabeth Line between Whitechapel and Shenfield is due to problems with the signals and minor delays on the Piccadilly line between Acton Town and Heathrow Airport. That's due to an earlier problem with the points at Acton Town.
4: What you're hearing is real. The aliens have landed and they have something to say.
5: Take us to your dealer. Just 0.9% APR on every new Mini.
4: They just want to go to a Mini retailer.
5: Mini.
4: You heard them. Off we go.
6: Make contact at your nearest retailer and get 0.9% APR representative across the entire range with a 25% deposit and 24-month term. Mini UK is a credit broker. Order by 30th September, delivered by 31st December. PCP with Mini Financial Services, subject to status. T's and C's apply. Mini.co.uk/offers.
7: Like our gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
8: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
7: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel Royal on 0208-922-3344, a 24-hour line. 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
7: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना.
12: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash & Carry's, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: Minar Jewelers, best overall business of one's worth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208 767 7547.
17: Okay, Laura. From the top.
18: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
16: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
7: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: The artist of this week is none other than KG Yesudas. And KG Yesudas, जितनी भी उनकी बात करें कमी होगी, बिकॉज बॉलीवुड के ड्यूरिंग 70s और 80s के टाइम पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से गाने दिए थे. सोलफुल हिट्स, आई शुड से दैट, फॉर द हिंदी म्यूजिक हिस्ट्री. एंड आई एम गोइंग टू प्ले दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम साजन बिना सुहागन, द 70s एरा. खूबसूरत सा गाना है और बहुत ही प्यारा सा है. टॉक्स अबाउट लव, द जर्नी ऑफ लव. मधुबन खुशबू देता है. लेट्स हियर इट टुगेदर. दिस इज शीना फ्रॉम लाइक अ गोल्ड.

0: सिंपली सेइंग यू शुड बी अ गिवन नॉट अ टेकअप. एंड मूविंग ऑन, यस, हम बहुत सारी पुरानी सी ओल्ड मेमोरीज को रिवाइव कर रहे थे एंड आई डिड आस्क कि आपको सिर्फ एक चीज़ वापस लानी हो पुराने ज़माने से तो क्या लाएंगे, बिन मोबाइल वाली ज़िंदगी या फिर टॉफी या दूरदर्शन के संडेज या कैसेट के ज़माने. मेजोरिटी ऑफ यू हैव वोटेड फॉर दैट. यू बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये कैसेट कैसे काम करती थी, अभी भी नहीं उसको आप रिजॉल्व कर पाए. और दूरदर्शन अपनी फैमिली के साथ संडेज को बैठ के देखना और रेडियो सुनना वॉज वन ऑफ द थिंग दैट यू बेसिकली डेफिनेटली मिस. जब बहुत सारी ऑप्शन हो जाती है ना लाइफ में तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी ऑप्शन को जो है चूज किया जाए. बट वेन यू हैव लेस ऑप्शन इट्स ईजी, इजंट इट? लाइफ वॉज क्वाइट सिंपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी भी सिंपल है, वो कहते हैं ना दिमाग का गेम है. जिंदगी तो हमेशा से सिंपल थी, हम इंसान ही हैं जो उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, इन्जॉय. बट इट्स सो गुड टू गेट योर मैसेजेस. और सब लोगों की शायद मैंने वो छोटी सी याद को दोबारा से जो है जिंदा कर दिया बहुत ही खूबसूरती से. यू नो एवरी वन हैज़ शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि कैसे वो अपनी नानी के साथ बैठते थे और टीवी देखते थे या यू नो दे यूज टू जस्ट सिट विद द फैमिली एंड एवरी वन इज सेइंग ओह माय गॉड शुक्र है ये मोबाइल जो है, ये अगर नहीं होता तो अच्छा ही होता. या इंटरेस्टिंगली एक और ऑप्शन लोगों ने निकाल दी, सोशल मीडिया. आई नो फॉर फ्यू पीपल इट्स अ बूम एंड फॉर बेसिकली यू नो इट डज हेल्प देम इन देयर बिजनेस. बट सोशल मीडिया से दूर तरीके की लाइफ भी होती है, वो रियल लाइफ होती है भाइयों बहनों. इट्स नॉट रियल लाइफ, सो डोंट लेट दैट इम्पैक्ट यू. बट एवरी फेज, एवरी यू नो कहेंगे जिंदगी के हर पल को खुशी से मनाइए और इन्जॉय करिए. दैट्स ऑल अबाउट इट, इज़न्ट इट? एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाना. सो आप जहाँ भी बैठे हैं उठ जाइए और थोड़ा सा डांस करिए.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट derivalley.net.
0: व्हेन यू हैव अमलगमेशन ऑफ बप्पी लहरी एंड उषा उत्तप तो क्या होता था? वही होता था जो मंजूर डिस्को डांसर होता था. एम आई राइट और एम आई राइट?
3: कोई या

चूरू चूरू परा पे पारा परा. मैं बहुत बैड सिंगर हूँ, बट यस ऑन द बुलंद आवाज ऑफ जसपिंदर नरोला. ओ एम जी, क्या गाना है. नहीं

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Ye hai. Like a gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: हम सब लोगों को हॉलीडेज बहुत पसंद है, राइट? और सबको चाहिए भी होती है. साउथऑल ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द एफसीडीओ हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई. कॉल साउथऑल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
1: ये है like a gold.
4: Like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
11: परंपरा भी
12: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 0779518.

0: ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
6: Hi, मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए
7: द इवनिंग शो विद अश्विनी
8: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
9: शबनम प्यार से लोग मुझे कहते हैं

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्मा नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: पे जिन्होंने अभी अभी ट्यूनिंग किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 30th ऑफ जुलाई थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे आप और हम साथ में यहीं पे। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे हमारी मित्र मंडली आ गई है, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रही है। तो मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स, जी हाँ भाई साहब, आप दीदी आप भी हाँ चलिए आइए, हाई हेलो करके हमें बताइए तो सही कि आपने ट्यून इन किया है। पूरी दुनिया जहाँ पे भी आप हमें सुन रहे हैं, इतना प्यारा सा ये एक व्हाट्सएप नंबर है केवल और केवल आप लोगों के लिए कि आइए अपनी हाजिरी लगवाइए। तो सवाल पूछेगी अश्विनी, बिल्कुल पूछेगी, और कोई थियरी बिल्कुल। थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे सेकेंड आवर में, गजलिया का भाली मैं क्या सुनाने वाली, और यादों की बारात में बहुत ही प्यारा गीत। तो 3 घंटे में आपको पता है कि क्या स्ट्रक्चर चलता है इस शो में, एंड वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि आ गया कल तो फैंटास्टिक फ्राइडे। ये सवाल क्या है, सवाल जवाब क्या है भाई सवाल। ओके, तो सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ, ये सवाल है मेरा। सोलो ट्रिप या फैमिली के साथ, इसका आंसर मुझे दीजिए। एंड थ्योरी पे बात करेंगे कुछ ही देर में, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत अभिनेत्री फिल्म से। नेक्स्ट
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 55 पैसे। एंड साथ में जरा एक काम करिएगा कि जब भी आप एक्सचेंज करवा रहे हैं तो इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप पे कर लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: हाँ सो मत बोलो।

0: चलिए मिलाने की घड़ियां देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, 7:22, 30th of July, यानी बस महीना खत्म, नया महीना, नई एक्सपेक्टेशंस, नई मेहनत, नया जोश, तो नएपन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। एंड जनरली इस टाइम पे मैं आप सबको कोई ना कोई लाइफ थियरी ज़रूर बताती हूँ। आज बात करेंगे द अम्ब्रेला थियरी के बारे में। तो एक लड़की अपना छाता लेके निकली, अपना अम्ब्रेला लेके निकली, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अब वो छाते के साथ में एक कैफ़े में घुस गई। बारिश से उस छाते ने उस लड़की को काफ़ी देर बचाया। अब जी कैफ़े के अंदर जब ये चली गई, फिर भी इसका छाता खुला हुआ था, इसने छाते को बंद नहीं किया था। अब दरवाजे से एंटर की, फिर और एक दूसरा दरवाज़ा था, तो एंटर करने में इसको तकलीफ हुई। ऊपर लाइट्स लगे थे, वो कैसे तो बचते बचाते उन कुर्सियों के बीच से अपने छाते को संभालते हुए, ऊपर लाइट्स से छाते को बचाते हुए चलने लगे। कहती कि क्या ये कितना छोटा रूम है, कैसे लोग हैं यहाँ पे, इन्हें समझता नहीं कि और ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। और कुछ देर बाद वहाँ का एक वेटर आया, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप अभी भी ये छाता लेके इस कैफ़े के अंदर चल रही हैं। तो देन उस लड़की के ध्यान में आया, उसने कहा ओहो क्या बात है, मैंने तो अभी तक छाता बंद ही नहीं किया था। उन्होंने छाता बंद किया, आराम से टेबल पे बैठी और अपनी कॉफ़ी पीते रही। अब छाते का और हमारी लाइफ थियरी का क्या संबंध है, ज़रा बताओ अश्विनी। तो ऐसा है कि बचपन से हम सभी जो हैं कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज़्म सीख जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखने के लिए, एंड अपने ईगो को मसाज करते हुए हम बड़े होते जाते हैं। धीरे धीरे धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी में वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे वो लड़की उस बारिश से खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी छाता लेके, ऐसे ही हम ह्यूमंस भी करते हैं। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इतने मशगूल हो जाते हैं और इतने तत्पर भी रहते हैं एट टाइम्स कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। इस एक डिफेंस मैकेनिज्म में इंसान जो है हर दूसरे इंसान को एक ही तरीके से नापता तोलता है। अब कई बार ज़िंदगी में बहुत ही बहुत खूबसूरत लोग आते हैं, बेहद खूबसूरत लोग जिनका स्वभाव भी बड़ा प्यारा होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करने में वो भूल जाते हैं कि सब इंसान जिनसे वो मिल रहे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। तो अपना ईगो मसाज करने के लिए या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे जिस तरीके से वो दूसरों से बात करते हैं, एंड मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, ये चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उस लड़की ने छाता बंद किया और रिलैक्स होकर कॉफ़ी पीती रही, ये हम ह्यूमंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी अपने अंदर का ये डिफेंस मैकेनिज़्म बंद करके कहीं कोने में रखना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो बेहद खूबसूरत लोग आपके लाइफ में आपका साथ दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपके साथ उस पूरी जर्नी पे बहुत खूबसूरती से चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके इस मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, वो दूर हो जाए। कब अम्ब्रेला बंद करना है और आराम से बैठ के कॉफ़ी पीनी है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि लाइफ है आपकी, अम्ब्रेला थ्योरी है आपकी। कैसी लगी थ्योरी जरूर बताइएगा।
1: This is Ash Winnie on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Chawal ho best, sab kare test. Desha rice ka hai zamana.
6: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
7: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
13: Search is changing.
14: Customers aren't just using Google anymore.
13: They're asking AI.
14: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
13: One business, one recommendation.
14: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
13: Will your business be the answer?
14: Or the one that got left behind?
13: The future of search has already started.
14: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
13: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
17: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com। Stop.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.7 इंडियन रुपी, 374.2 पाकिस्तानी रुपी, 452.56 श्रीलंकन रुपी, 166.43 बांग्लादेशी टाका, 88.08 अफगान अफगानी, 174.29 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.58 मॉरिशियन रुपी.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi.

0: place best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LEMFI now. T's and C's apply.
1: LIKA Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £98.01 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: मिलाने की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुहाग फिल्म से सुनाया आप सभी को 18 बरस की. एंड उसके पहले भी हमने आपको बहुत ही बढ़िया गीत सुनाया था नया दौर फिल्म से. स्पेशली उसमें वो टांगे की टांगा जो यूज़ किया ना, मतलब घोड़े के टप टप टप टप की आवाज़, वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. एंड स्टूडियो का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे कितना भी वॉल्यूम बढ़ाओ कोई आके डांटता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है. वी रियली एंजॉय इट. जी तो आप सबको अम्ब्रेला थ्योरी बहुत पसंद आई. ईगो को कब कहाँ लपेट के रखना है ये समझ में आया. तो ज़िंदगी देखिए, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है, ना जाने क्यों हम ईगो के चलते ना उसे अनवांटेडली कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ, मतलब इस आवर का आखिरी ट्रैक, अधिकार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में. नेक्स्ट आवर के लिए तैयार रहिएगा बिकॉज 8 o'clock टू 9 o'clock हमेशा स्पेशल बन जाता है. आप सभी का साथ इतना मिलता है. अच्छा आज थ्रिलिंग थर्सडे है तो पोयम सुनेंगे, बताइए जितने यहाँ आएंगे उस हिसाब से पोयम आएगी. सो अब लास्ट ट्रैक एंड यही ट्रैक हमें ले चलेगा 8 o'clock की न्यूज़ की तरफ. थ्रिलिंग थर्सडे बिल्कुल चल रहा है यहीं पे आपके अपने लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर पे. शोज़ के बारे में आप लोगों के फीडबैक आते रहते हैं एवरी गाने के बाद में. यकीन मानिए जब आप लोग आह उह उफ वाले जब फीडबैक भेजते हैं ना, तो मैं भी अपनी क्या बात है.
0: This is Ashwini on Laika Gold.
1: Laika Gold.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.
6: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
3: लंदन, आर यू रेडी? राघव इवेंट्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives

0: welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini. 8:15. पहले दो गीत, the first one was कुमार सानू की आवाज में सोचेंगे तुम्हें प्यार. I love this track. दीवाना फिल्म से सुनाया. 90s वाले बच्चे हैं ना हम, तो हम तो भैया ऐसे ही खुश हो जाते हैं. 90s वालों खुश हुए कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ बताओ मुझे, लिखो मैसेज बताओ. एंड अलग अलग, विच वॉज रिलीज इन 1985, उस फिल्म से कागज कलम, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में. तो जी हाँ, मैंने आप सबसे पूछा कि क्या मेरी लिखी हुई कोई पोएम सुनना चाहेंगे, तो आप सबने कहा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सुनाएंगे. लेकिन उसके पहले बात हो जाए ज़रा ट्रिप्स के बारे में. मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ जाना पसंद करेंगे. अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सोलो ट्रिप जाना पसंद है. फैमिली के साथ में डेफिनेटली हम लोग अपने अपने जो बेटर हाफ्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, इनके साथ तो हम लोग जाते ही हैं. फ्रेंड्स के साथ तो जाते हैं, लेकिन सोलो ट्रिप क्यों करनी चाहिए, अनजानों के साथ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप एक्चुअली कैसे हो ये आपको भी तब समझ में आता है जब आप बिल्कुल अनजानों के साथ अकेले अपने आप के साथ घूमते हो. यानी कि आप सोलो ट्रिप जा रहे थे बस में, जो भी टूर लेते हैं, जो भी ट्रेन प्लेन लेते हैं, जो भी फ्लाइट्स लेते हैं, बाकी के तो लोग स्ट्रेंजर्स ही हैं ना. उस समय आपका अपना आप खुद होते हो. लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग हम अपने आप से ही तो भागते हैं, अपने आप से मिलना नहीं चाहते. तभी तो ज़िंदगी में बहुत सारी एस्केप्स हमने लगा रखी हैं. 10 मिनट भी हमें शांति से बैठना नहीं है, ना हेडफोन्स, ना टीवी, ना रेडियो, ना म्यूज़िक. कभी दिए खुद को वो 10 मिनट? देखिए देखिए, मिलिए अपने आप से. बहुत प्यारे इंसान हैं आप. देखो यार, टाइम देखिए ज़रा. हाँ, अपनी खूबियाँ देखो, ईगो नहीं, खूबियाँ देखो. आई एक्चुअली गो फॉर अ सोलो ट्रिप एवरी ईयर. अब वो बात अलग है कि मेरे डेस्टिनेशंस जान पहचान वाले ही होते हैं, लेकिन अकेले जाने का मज़ा एक तो ये होता है कि सच में मुझे मैं ही समझ में आ जाती हूँ. एंड एवरी ईयर एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू इन मी एंड आई एम जेन्युइनली लविंग दैट. चाहिएगा, सोलो ट्रिप करिएगा, स्ट्रेंजर्स से बातें करिएगा, क्योंकि कई बार हमारे खून के जो रिश्ते होते हैं ना, उनसे भी बेहद करीब लोग हमें ऐसे सफ़र में मिल जाते हैं. और कई बार ये जो इंसान मिलते हैं ना, वो आपके हम सफ़र भी होते हैं. नॉट रोमांटिक एंगल इज़ इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम इन लाइफ यार. सोलमेट्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, कितने सारे और भी रिश्ते हैं. आ जाके हम लोग क्या करते हैं कि बस वो एक लव बोला, यानी मतलब लवर्स हैं, यानी रोमांटिक एंगल. ना ना ना, रखो ना यार, कुछ रिश्ते रखो, प्योर रखो, पायस्ड रखो. बहुत सुंदर होते हैं ऐसे रिश्ते, एंड आई एम श्योर आप सबके लाइफ में ऐसे रिश्ते होंगे. ध्यान से देखिएगा. पोएम सुनाऊंगी बस कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले आर डी बर्मन की आवाज में थोड़ा मस्ती भरा गीत.
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 55 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: मजा आया आरडी बर्मन की आवाज में शोले, विच वॉज रिलीज इन 1975। एंड शोले का ही तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है हमारे शो पे। कितना पसंद करते हो आप लोग इस म्यूजिक को, हमेशा हर रोज हर आवर में किसी ना किसी का मैसेज होता है दैट शोले वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। मुझे पता था आप लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए तो फिर मैंने ये चूज किया था, स्पेशली दिस पार्ट, है ना। ओके, सो आज मैं आपको जो पोयम सुनाने वाली हूँ ये ना हमारे उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे। हमारे स्कूल वाले बचपन के जो दोस्त हैं ना, कुछ भी बोलो हाँ, इनकी एक अलग ही जगह रहती है हमारे जहन में। बड़े स्पेशल होते हैं, कमी नहीं होते हैं ये दोस्त, लेकिन बड़े स्पेशल होते हैं क्योंकि उनके साथ आपके वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो शायद आप अपने घर वालों के साथ में नहीं शेयर कर पाते। चलिए ले चलती हूँ आपको। तो इस कविता का शीर्षक है, पोयम का शीर्षक है चलो ना। चलो ना कहीं घूम आते हैं, चलो ना कहीं घूम आते हैं, गलियों में जो चीजें देखी थी ना उन्हें साथ लेके आते हैं। ए यार आओ ना, चलो उन गलियों में वापस घूम आते हैं। हम सबकी साइकिल की वो सवारी, हंसी मजाक कुछ छेड़छाड़, वो गलियों में गूंजती बातें वापस ले आते हैं ना। याद है ना गलियों में कैसे कोने में खड़े होके दो तीन लोग तो गपियाते होंगे, है ना। वो गलियों में गूंजती बातें वापस ले आते हैं, चलो ना उन गलियों में घूम आते हैं। अब चाहे लड़के हो या लड़कियां, ओके, सो हम सब की सीक्रेट्स, किसी की गॉसिप जो एक ठेले पे खड़े होके चाय पे चर्चाते थे, चलो ना एक एक चाय साथ पी आते हैं। आओ ना यार उन गलियों में वापस घूम आते हैं। अपनी ही धुंध में मस्ताए तिरछी आंखों से जो उन्हें देख आते थे, इन्फैचुएशंस की बात चल रही है यहाँ पे। अपनी ही धुंध में मस्ताए तिरछी आंखों से जो उन्हें देख आते थे, मन ही मन मुस्काए कुछ इशारे दे और कुछ इशारे ले आते थे। चलना यार उन गलियों में वापस घूम आते हैं। बचपन था या बचपना, बचपन था या बचपना, इस जद्दोजहद में नहीं पढ़ते हैं, चलना साथ घूम आते हैं। अपने शहर की उन यादों को खूब जी आते हैं, आओ ना यार चलो ना, कितना भाव खा रहे हो। कोई गैदरिंग करके ये सारी यादें ताज़ा कराते हैं, चलो ना कहीं घूमाते हैं। आई एम श्योर आप ये पोयम सुनते सुनते आप उन सारे ही दोस्तों को अभी याद कर रहे होंगे जिनके साथ में ऐसे पल आपने बिताए हैं। और अगर उनसे कांटेक्ट में नहीं है तो उठाना फ़ोन कल सुबह, अगर एशियन कंट्रीज से आप हो जहाँ पे अभी रात हो चुकी है, एक सीधे मैसेज करो एंड फ़ोन घुमा के उनसे बात करो। दोस्त जिंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होती है दोस्ती की, क्योंकि हम उन इंसानों को उन दोस्तों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो है, बदलने की कोशिश नहीं करते। बताइए पोएम कैसी लगी।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Listeners, we interrupt the airwaves to share an incredible discovery. The reason why Britain hasn't been so great of late is because the country hasn't been eating enough Weetabix. We must get to work in rebuilding Great Britain, Bix by Bix. By delivering Weetabix to whoever plans the traffic diversions, to delivery drivers who can't seem to find your house, and people who don't stack the dishwasher properly. To Britain, we must say, have you had your Weetabix?
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली presents an evening of elegance hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
7: शाम चलने लगे दिल मच.
6: With the legendary Anoop Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
8: साफो ट्रेवल. At all protected.
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
11: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
10: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Emotion of the day. Emotion.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे,
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मिला लेंगे खड़िया, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:37। मैंने कहा था ना 35 के आगे जरा मैं थोड़ी गड़बड़ा जाती हूँ, हाँ तो 45, 55, 56 कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है, एंड इट्स ओके टू कन्फेस एट टाइम्स कि हमको चीज़ें नहीं आती तो नहीं आती. ओके आशा भोसले की मदहोश कर देने वाली आवाज़ में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स आप सबको सुनाया इजाज़त, एंड दैट वॉज इमोशन ऑफ द डे थ्रिलिंग थर्सडे में आज आप सबको सुनाया गीत. आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं क्या अश्विनी तुम हमको वापस स्कूल डेज में ले गई यार, उन यारों के पास, उन सहेलियों के पास. यही तो इंटेंशन है ना इस शो का, सारे इमोशंस खुश रहते हो ना आप शो सुन के, कभी कभी जो बिछड़े लोग हैं उनको भी याद करके और ज़्यादा खुश हो जाइए जी. तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस अगर हम कर लें ना अपनी सोच में भी तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी. इस बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले बाकी की और भी चीज़ें हैं शो में.
0: ये है Like a Gold.
4: Like a Gold.
0: It's summer on the Like a Radio Network.
5: ये है
6: Like a Gold.
7: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
3: Reinvention and Entrepreneurship episode number 26 देख सकते हैं, सुन सकते हैं. दीप राजा ने सवाल जवाब किए हैं मीनल सामरी से from Samaria Global Finances से, वो आई थी. Like a Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like a Extra is here. This is Ash Winnie on Like a Gold.
8: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
10: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: विजिट travelhubworld.com.
11: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
13: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर travel mantra.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.69 इंडियन रुपी, 374.18 पाकिस्तानी रुपी, 452.43 श्रीलंकन रुपी, 166.44 बांग्लादेशी टाका, 88.12 अफगान अफगानी, 174.28 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.19 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 48 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio इन लंदन एंड Leica Radio इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. अब सेकेंड आवर भी खत्म होने आ रहा है. इस आवर का गीत जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में. दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते और प्यार में मरते जाएंगे. काम भी कर लो कुछ, है ना. ओके, तो एक्चुअली आप लोगों के मैसेजेस आते हैं. आप सभी ना मुझे मैसेजेस के साथ में ना अच्छा खासा बिजी रखते हैं. मतलब यहाँ पे चार स्क्रीन्स हैं, यहाँ पे गाने भी प्ले हो रहे हैं, कुछ रीड्स भी कर रहे हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें भी बता रहे हैं, और आप लोगों के मैसेजेस को हम जो है रिप्लाई कर रहे हैं. बड़ा मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी इंटरैक्टिव होते हैं आप लोगों के साथ में मैसेजेस हमारे. एंड किस तरीके से शो जा रहा है आप लोग उसके बारे में भी फीडबैक देते रहते हैं. तो ये जो इस अब जो गाना हमने सुनाया था आप सभी को, जब प्यार किसी से होता है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, उसमें एक लाइन है कि हर बात पे आहे भरते हो. नाउ दिस लाइन इज स्पेशली फॉर पेट पेरेंट्स जिनके यहाँ डॉग्स हैं. आई एम अ पेट पेरेंट, मेरे यहाँ पे माई डॉग पीचेस, ब्लैक लैब्राडोर, एंड शी इज़ एक भरो आहे. एंड आई एम लाइक, यार बेटा तू यहाँ से सोफे पे बैठ, बेड पे बैठ, मतलब यू जस्ट बैठना उठना घूमना फिरना, नो रेंट नो काम धाम, और फिर भी आहें कैसे भरते हैं मुझे समझ में नहीं आता है. एंड व्हेन आई डू ऑल दिस बड़बड़ विद माय डॉग, शी विल जस्ट गिव मी दोज लुक्स कि हो गया तुम्हारा बात करके. एंड आई एम लाइक हो गया. सो आई एम श्योर पेट पेरेंट्स जितने भी हैं, ज़रा प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कि आप लोग भी अपने पेट्स के साथ बातें करते हैं. तो जो लोग अपने पेट्स के साथ में बातें करते हैं

0: बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जैसे किसी ह्यूमन के साथ में आप चीज़ें शेयर करते हैं ना, अब वो जानवर आपसे बात तो नहीं करता, लेकिन आप जिस तरीके से उस प्यारे से बच्चे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, रिसर्च की गई है कि वो एनिमल आपसे और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं एंड अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट होता है इनका आपके लाइफ में।
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold. This is Ashwini on Leica Gold.
2: Leica Gold. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
3: Khatron Ke Khiladi.
4: Dad.
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
9: एक्सपीरियंस an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
11: बीकानेर वाला परंपरा भी,
12: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
13: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
14: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: दिस इज Leica गोल्ड।
15: Reminisce those classics.

0: Ashwini, brightening up your weeknights.
1: वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर का आगाज हमने किया था कुछ कुछ होता है के टाइटल ट्रैक से, अलका याग्निक एंड उदित नारायण के आवर में रिफ्रेशिंग ट्रैक मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला. किशोर कुमार की आवाज़ में राजपूत फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. अच्छा, एंड में जो ट्रक ट्रक ट्रक ट्रक आवाज़ आ रहा था, वॉज दैट द फुटस्टेप्स ऑफ घोड़ा अगेन? हाँ, वो टांगे की टांगे पे थे, घोड़े पे क्या थे एक्चुअली, आई डोंट रिमेम्बर ये वाला गाना. सो बिल्कुल बताइएगा ज़रूर. ओके, सो नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं अमिताभ बच्चन एंड आशा भोसले की आवाज़ में द ग्रेट गैम्बलर से.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 55 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच.

0: 9:19 अमिताभ बच्चन और आशा भोसले की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर से सुना है आप सभी को ये गीत। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो आज है 30th of July। किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी को नौकरी लगी होगी, किसी की नौकरी का लास्ट डे होगा, किसी के लिए रोज का ही दिन होगा, लेकिन आज और भी कई चीजें मनाई जाती हैं। तो आज मनाया जाता है नेशनल चीज केक डे, नेशनल चिली डॉग डे, नेशनल इंटर्न डे, नेशनल विसल ब्लोअर डे, नेशनल फादर इन लॉ डे, शेयर अ हग डे यानी झप्पी वाला दिन, एंड दिस पेपर बैक बुक डे। सो आई एम क्वाइट एन ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू बुक्स। पेपरबैक बुक्स मुझे अच्छी लगती है, स्पेशली जब भी कोई नई बुक आप लाते हैं, कोई नई पुस्तक घर पे लाते हैं, जब उस बुक को आप खोलते हैं तो जो पेपर एंड डाई का जो एक मिश्रित यानी मिक्स्ड जो एक फ्रेग्रेंस कह लें, अरोमा कह लें, आई डोंट नो, अभी पेपर बैक बुक का जो भी स्मेल इज़ बैड, दैट इज़ नॉट स्मेल, दैट इज समथिंग गुड, यू नो। नई बुक जब भी हम लाते हैं तो उसका एक अलग फ्रेग्रेंस या जो भी है, यू गॉट द पॉइंट राइट, मैं क्या कह रही हूँ। सो बुक पढ़ते बैठो वीकेंड पे, चाय कॉफ़ी का मग हाथ में, एंड वो डेडिकेटेड कपल ऑफ आवर्स, दैट्स सो ब्यूटिफुल, आराम से बैठें, बिल्कुल अपनी अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कौन रीडिंग करता है अभी फिलहाल, कौन कौन सी बुक रीड कर रहा है, ज़रा मुझे लिख के भेजिए ना। अगला गीत जो आपको सुनाएंगे येसुदास की आवाज़ में, लहू के दो रंग, उस फिल्म से लिया है जिद ना करो, अगेन अ लवली ट्रैक येसुदास की आवाज़ में। येसुदास इज आर्टिस्ट ऑफ द वीक। सो अब धीरे धीरे आप और हम बढ़ रहे हैं आगे, एंड गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो लाइव थियरीज आपको सुनाती हूँ उसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है ऑन माई इंस्टाग्राम रेडियो वाली अश्विनी, आप ज़रूर वहाँ चेक कर सकते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Listeners, we interrupt the airwaves to share an incredible discovery. The reason why Britain hasn't been so great of late is because the country hasn't been eating enough Weetabix. We must get to work in rebuilding Great Britain, Bix by Bix. By delivering Weetabix to whoever plans the traffic diversions, to delivery drivers who can't seem to find your house,
3: and people who don't stack the dishwasher properly.
2: To Britain, we must say, have you had your Weetabix?
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Dad.
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by FCA and PRA.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
10: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल।
11: जॉइन लेजेंडरी singer Kavita Krishna Murthy
10: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे। Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.64 इंडियन रुपी, 374.09 पाकिस्तानी रुपी, 452.4 श्रीलंकन रुपी, 166.3 बांग्लादेशी टाका, 87.98 अफगान अफगानी, 174.21 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.56 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.28 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां आखिरी बार और देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. सुबह सवेरे आएगी हमारी काजल, उनका साथ दीजिएगा. एंड अब ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली ये गीत आप लोगों के लिए मैंने डेडिकेट किया था. क्या बोल मेरे साथियाँ, कितना मुझसे प्यार है. दना दना आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं. सचमुच थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू इन ग्रैटिट्यूड कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं और आपका प्यार मैसेजेस के द्वारा मुझे मिलते रहता है. कल है फैंटास्टिक फ्राइडे, तो तैयार रहिएगा और बहुत डांस मस्ती होगी. खाना पीना करके अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए पहले ही तैयार रहिएगा. फिर बाद में मत कहना कि अश्विनी तुमने कहा नहीं था. ओके, बहुत से लिसनर्स फिर मुझे कहते हैं काश हम पहले खाना वाना खा के बैठ जाते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं. देखो मैंने अब भी बता दिया, याद रखना. गजल या कवाली में क्या सुनाने वाली, तो गजल सुना रही हूँ जगजीत सिंह की आवाज में. एंड आखिरी ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी लता मंगेशकर एंड शब्बीर कुमार की आवाज में बेताब फिल्म से जब हम जवां होंगे. सो आप सबके लिए ये दो गीत मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ. हमेशा की तरह यही कहूँगी कि लाइफ बड़ी सुंदर है, उसे बर्बाद ना करें. प्यार दो, प्यार लो, और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. सो ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड.
2: दिस सुपरहिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल.
3: गजल.

0: This is Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold 15th and 16th of August at 9 PM.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203 736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Dad.
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Experience an unforgettable evening of timeless Ghazals, the prince of ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल.
8: Like a gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.
9: शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
2: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
7: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी.
2: खतरों के खिलाड़ी.
1: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस दिसंबर.
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके.
1: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963 757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Southall Travel. 7 days a week. Southall Travel. 24 hours a day. We're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.

0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Chalo jaiye ek nava safar par.
5: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
7: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Food.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
10: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio और like a gold. आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground. हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likearadio.com.
6: ना रुकें, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।